मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, DRM 1233 किलोहर्ट्ज, DTH, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी

0: मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज सुनिए बैगन की खेती के विषय में जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम बैगन की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जो किसान भाई पहले ही इसकी बेहन डाल दिए हैं यानी जून से जुलाई माह तक, उनकी बेहन इस समय तैयार हो रही है और उनकी रोपाई कर सकते हैं। जो किसान भाई बेहन नहीं डाल सके हैं, वह अगर तैयार पौध कहीं से मिल जाए तो लेकर के इस समय उसकी रोपाई कर सकते हैं। ध्यान रहे पौध किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदी जाए। बैगन की जो उन्नतशील किस्में हैं उन्हें भी जान लें। ये दो तरह की हैं, एक लंबे फल वाली किस्में, दूसरी गोल फल वाली किस्में। लंबे फल वाली किस्मों में पंत, सम्राट, पूसा परपिल्लांग, पूसा क्रांति, H7 प्रमुख हैं। इसके अलावा जो गोल फल वाली किस्में हैं उनमें पंत ऋतुराज, रामनगर जायंट और हिसार श्यामल प्रमुख हैं। इसके अलावा बैगन की कुछ संकर प्रजातियां भी हैं, उनकी भी खेती आप कर सकते हैं। बैगन की खेती के लिए चिकनी दोमट तथा बलुई दोमट दोनों तरह की मिट्टी उपयुक्त होती है। रोपाई का कार्य ऐसे खेतों में करना चाहिए जिसकी मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ अच्छे जल निकास वाली हो। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए रोपाई से पहले खेत में 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खूब सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देते हैं और अंतिम जुताई के समय 160 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाकर फिर जब खेत तैयार हो जाए तो रोपाई करते हैं। रोपाई के लिए 5 से 6 सप्ताह की पौध उपयुक्त होती है। अगर लंबे फल वाली किस्में लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर। यदि गोल फल वाली किस्में लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। चूंकि शुरू में पौधे कोमल होते हैं जिसके कारण ये खरपतवारों की मार से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अतः 30-40 दिन तक फसल को निश्चित रूप से खरपतवारों से

0: मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहना चाहिए। यदि हाथ से निराई गुड़ाई करना संभव न हो तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए फ्लू क्लोरालिन दवा की 2.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के पहले खेत में मिला देना चाहिए। बैंगन की खड़ी फसल में यूरिया का भी बुरकाव किया जाता है, वह भी 2 बार में। एक बार जब फसल 30 दिन की हो जाती है तो 80 किलोग्राम यूरिया का प्रति हेक्टेयर, तथा जब फसल 45 दिन की हो जाती है तो फिर 80 किलोग्राम यूरिया का बुरकाव कर देना चाहिए। ध्यान रहे, ये टॉप ड्रेसिंग खरपतवारों को नियंत्रित करने के बाद ही की जाए ताकि पौधे उर्वरकों का समुचित उपयोग कर सकें। बैंगन की फसल में मुख्य रूप से तना एवं फल छेदक कीट का प्रकोप होता है। ये तना अथवा फल में छेद कर देते हैं जिससे तने का वह हिस्सा टूट करके गिर जाता है या फल में छेद होने से सड़न हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले उस टहनी को तोड़ देना चाहिए जो कि इस कीट से प्रभावित होती है, और फिर उस टहनी को जला देना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस बैंगन की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बैंगन की खेती के विषय में जानकारी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भक्ति में तो सिर्फ भाव का महत्व होता है।

झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले ही मोहम्मद का नाम लेते हैं।

जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज की आराधना के गायक कलाकार थे अनूप जलोटा, मोहम्मद याकूब, तुलसी कुमार और संजय तलवार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र मीडियम वेव के मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है गुरु महिमा।
1: न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं है। वस्तुतः ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन निष्फल है और यह ज्ञान गुरु के बिना मिलना संभव नहीं है। संसार के सभी देशों के साहित्य में, सभी शास्त्रों में, सर्वत्र गुरु की महिमा मुक्त कंठ से वर्णित है। माता जन्म देती है, लालन पालन करती है, पिता आर्थिक सहाय प्रदान करता हुआ पुत्र का पोषण और संवर्धन करता है, परंतु गुरु उसे ज्ञान देकर मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बना देता है। गुरु ज्ञान रूपी अंजन की श्लाका से लोक के अज्ञान रूप अंधत्व से पीड़ित नेत्र को खोल देता है। मनुष्य को मनुष्य स्वरूप में जन्म देने वाला गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु ज्ञान का सृजन एवं पालन तथा अज्ञान का संहार करता है। गुरु तत्व ही वस्तुतः ब्रह्म तत्व है। काशी के अप्रतिम संत कबीर का तो कहना है कि यदि गुरु और गोविंद सामने खड़े हों तो गुरु ही पहले प्रणाम के योग्य है, जो गोविंद तत्व की पहचान

0: कराने वाले हैं। गुरु कुम्हार तुल्य हैं और शिष्य घट तुल्य है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट दे देकर उसके खोट को निकाल देता है, वैसे ही गुरु अंतर में दया, विवेक, विनय आदि का आधान कर कठोर तप, संयम, तितिक्षा आदि के बाह्य अनुशासन से शिष्य को ज्ञानामृत का पात्र बना देता है। गुरु केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाता, वो तो सदाचार, संयम, विनय, विवेक आदि उदात्त मानवीय गुणों को बड़े धैर्य से शिष्य में प्रतिष्ठित करता है। क्या कर्तव्य है, क्या सन्मार्ग है, क्या गंतव्य है, क्या प्राप्तव्य है, क्या सत्संग है इत्यादि बोध कराकर गुरु शिष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक दृष्टि से योग्य बना देता है। गुरु उपदेशामृत का पान कराकर मृत्यु भय से मुक्त करता है। इस अपार संसार सागर में डूबते उतराते जीव के लिए निपुण नाविक गुरु ही है। वही अंधकार में भटकते पथभ्रष्ट जीवों के लिए सन्मार्ग दर्शक आकाश दीप है। यही कारण है कि विश्व के सभी धर्मों में गुरु दीक्षा तथा गुरु सेवा का महत्व स्वीकृत है। गुरु महिमा के कारण ही धर्म ग्रंथ भी गुरु ग्रंथ साहब नाम से पुकारा जाता है। संगीत, नाट्य, शिल्प, आयुर्वेद, धनुर्वेद, योग, तंत्र इत्यादि प्रयोगात्मक विषय गुरु के अनुग्रह के बिना शिष्य को सम्यक रूप से नहीं प्राप्त हो सकते और प्राप्त हो जाने पर भी सफल नहीं हो सकते। अतः शिष्य को श्रद्धा पूर्वक गुरु के प्रति सेवा एवं सौमनस्य का भाव रखते हुए गुरु में विद्यमान विद्या तथा कला को सीखना चाहिए, तभी प्रतिभा का प्रसार, बुद्धि का विकास, कार्य में दक्षता, राष्ट्र की अखंडता तथा समाज का सर्वाधिक मंगल होगा। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय था गुरु महिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वस्थ जीवन शैली और हमारा आहार व्यवस्था, इस विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे।
2: नमस्कार। हम लोग स्वास्थ्य के लिए कैसी जीवन शैली हो और कैसा आहार विहार हो, दरअसल जीवन शैली एक बड़ा टर्म है। जीवन शैली के भीतर ही हमारे आहार विहार के तत्व आ जाते हैं। जीवन शैली माने हम नियमित रूप से जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वही हमारी जीवन शैली है। जैसे कहा जाता है ना कि संस्कारों का समुच्चय संस्कृति है। और संस्कार क्या है? संस्कारों नाम गुणांतरा ध्यान है। जो व्यक्ति जैसा है उसका एक स्वाभाविक उसका स्वरूप है, प्रकृति है, लेकिन हम संस्कारों के द्वारा उसमें अनेक गुणों का आधान करके उसको परिष्कृत करके अपने अनुकूल बना लेते हैं और उन संस्कारों को जैसा जैसा करते हैं उनको कलेक्टिवली समुच्चय रूप से कहा जाए तो संस्कृति हो जाती है। ऐसे ही जीवन में हम जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं अगर उनका परमानेंट रिपीटिशन होता रहे, परमानेंट शब्द कहना एकदम से उचित नहीं है क्योंकि भूयसाम शब्द संस्कृत में डाला गया, बहुलता के साथ होता रहे तो वह चीज वहां की संस्कृति मान ली जाती है। हम ऐसा खाते हैं, इस देश के प्रदेश के लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे जीते हैं, इतने बजे उठते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, बहुलता के साथ जब करते हैं तो वहां की संस्कृति हो जाती है, वही वहां की जीवन शैली है। तो हम अपनी जीवन शैली को कैसा बनाएं? पहली चीज तो यह है कि जो व्यक्ति जहां जिस देश प्रदेश में पैदा होता है पहली जीवन शैली उसकी प्रकृति बनाती है, उसके अनुरूप उसका आचरण बनता जाता है। जो भूमध्य रेखा में पैदा होगा उसकी अपनी प्रकृति बनेगी, जो ध्रुवों में पैदा होगा उसकी अपनी प्रकृति बनेगी, उसके अनुसार वो अपनी प्रकृति बना लेता है।

0: दूसरी प्रकृति है हमारा वातावरण से एडजस्टमेंट करने का। अगर हम प्रकृति से एडजस्टमेंट नहीं करते अपनी जीवन शैली के अनुसार तो हम नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए दूसरी जीवन शैली का मूल मंत्र है कि हम अपने परिवेश से, अपने वातावरण से साम्य बनाने की सोचें, और इन तीनों को मिलाकर के हमको नियमित रूप से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसका प्रारंभ हम लोग करते हैं ब्राह्म मुहूर्त ही उत्तिष्ठेत, हमको कितने बजे उठना चाहिए। उन्होंने कहा ब्राह्म मुहूर्त में उठिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि आप ब्राह्म मुहूर्त में ही उठिए। अगर कोई देर से काम करके आया है, 2 बजे रात सोया है, या उसके जीवन की ऐसी स्थिति है तो आप अपनी काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मूल मंत्र है उस समय उठना चाहिए। अब नए नए रिसर्चेस से भी हो रहा है कि अगर आप 11 से 3 बजे के बीच में नहीं सोते हैं तो आपके बॉडी के इंटॉक्सिकेंट्स का वो नहीं होता है। तो पहली चीज उठना, फिर उसके बाद क्या करना है, जात वेगा समुसृजित, आपके जो वेग हैं उसका उत्सर्जन करें। कई कई बार लोग आते हैं कहते हैं सर हमारा पेट ऐसा नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है, क्योंकि जो वेग उत्पन्न ही नहीं हुआ मुझसे उत्सर्जन का प्रयत्न कर रहे हैं, या जो वेग उत्पन्न हो गया उसको रोक रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जो वेग उत्पन्न हो गए उन्हीं वेगों का उत्सर्जन करना है। और बागभट्ट ने कहा सर्वे रोगा वेगो दीर्ण धारणे, या तो हम वेगों का उदीर्ण करते हैं या धारण करते हैं। बड़ी आश्चर्य की चीज है कि अगर समुचित रूप से मल निष्कासन ना हो तो शरीर स्वयं रोगी हो जाता है। मृत्यु भी, कई कई बार हम लोग हंसते हैं कि भगवान शिव को मृत्यु का देवता क्यों बनाया गया। अभी एक कैंसर के ऊपर चर्चा चल रही थी तो उसमें हुआ कि ये सेल नॉर्मली डेथ नहीं करते, नॉर्मल डेथ न होना भी बड़े भारी रोग का कारण है, समस्त कैंसर का कारण है कि जिस सेल की जब मृत्यु हो जानी चाहिए तो मृत्यु नहीं हो रही है। तो किसी भी चीज का नष्ट होना, हटाया जाना और विनष्ट किया जाना भी स्वास्थ्य की नवीन सृजन की प्रक्रिया है। इसलिए हम लोगों को यह मान के चलना चाहिए कि नवीन सृजन होना है तो पुराना हटाया जाना है। हम लिखा है बलार्धम व्यायाम कुर्यात, व्यायाम कितना हो का जितना हमारा बल है उसका आधा। हम सवेरे ही सवेरे अपने बल का दुगना व्यायाम कर ले रहे हैं, पूरे दिन थके थके नजर आ रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए जैसे वो आराम से कंफर्टेबली बिना अधिक सांस चले, बिना अधिक परेशान हुए जितना चल सकता है उसका आधा चले, जितनी एक्सरसाइज कर सकता है उसका आधा करे, धीरे धीरे क्रमशः उसको पादांशिक क्रम से बढ़ाए। तब तीसरे नंबर पर हमारा आता है आहार विहार। इसी में एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक शब्द लिखा हुआ है जीविकार्थ यत्न। हम सवेरे उठें, नहाएं, धोएं, कपड़े पहने, बड़ा अच्छा सब काम करें, व्यायाम करें और कुछ न करें, इसका भी शास्त्र का निषेध। आयुर्वेद कहता नहीं, आपको अपनी जीविका के लिए यत्न करना चाहिए। कैसे करना चाहिए का उन समस्त साधनों से करना चाहिए जो इस लोक और परलोक में भीत हैं। इस लोक माने जो यहां की व्यवस्था, यहां के शासन की व्यवस्था, यहां के कानून आपको परमिट करते हो, और परलोक माने कि यहां जहां की आपको जाने के बाद भगवान के पास कोई ना हो, ऐसे साधनों से जीविका का प्रयत्न करना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ जीवन शैली और हमारी आहार व्यवस्था विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। समय है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और

सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन

के संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर, दिन में 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर आज सुनिएगा मेघना कुमार का गायन। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर कलाकार होंगी सरोज वर्मा। इनके स्वर में लोकगीतों का आनंद आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर और रात्रि 8:00 सुनिएगा समृद्धि गुप्ता के स्वर में भजन। बहनों के अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में दिन में 1:15 पर आज बहनों को हम सुनवाएंगे।

0: नेत्रदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया विषय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक मिश्रा से बातचीत, साथ ही होगा गीत संगीत, सेहत ज्ञान और जायका। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज हमारे युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। इसके साथ ही मार्गदर्शन में सुनेंगे कानून के क्षेत्र में करियर के नए विकल्प विषय पर डॉक्टर अंजलि अग्रवाल की वार्ता। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आज किसान भाई सुनेंगे पत्ता गोभी की खेती विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार से बातचीत। अंग्रेजी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00 से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम वट वृक्ष। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:00 से। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं झनकार कार्यक्रम में 10:00 से, रसरंग कार्यक्रम में 7:31 पर और रसमाधुरी कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासंभवं सामान्योपयोग मार्गाणां संभावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्ति इति। विशेषतया प्रमुख परिवहन अवसंरचना परियोजनानां निर्माण समये सेवातीर्थे प्रगतिः इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक संभावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अङ्गीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटिरूप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000+ यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादकद्रव्यसम्बद्धाः समस्याः, नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय, केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फिजिंग नगरे।

0: चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25तमस्य चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000 अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृ कार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तर्जालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, एनसीसीएफ तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कार बनारस, सुप्रभात काशी। सुबह के 7 बज चुके हैं और इस भीगी भीगी अलसाई सी सुबह में आपके मन के सुरीले कपाट खोलने और इस सुहाने सवेरे से रूबरू कराने आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त शिखा। बनारस, आज खिड़की से बाहर झांककर जरा नजारा तो देखिए। कल से जो ये आसमान से अमृत बरस रहा है ना, उसने बनारस का मिजाज बदल के रख दिया है। गंगा मैया की लहरें हिलोरे ले रही हैं, घाट की एक एक सीढ़ी इस झमाझम बारिश में धुलकर बिल्कुल चमक उठी हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि बाबा विश्वनाथ के सबसे प्रिय महीने यानी कि सावन का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। सावन का अंतिम सप्ताह और बनारस का ये अलौकिक माहौल। बाबा की नगरी इस समय सिर्फ पानी से नहीं बल्कि शिव की भक्ति और मस्ती के रस में भीग रही है। चारों तरफ गेरुए रंग की छटा, कांवरियों के कांवड़ के घुंघरुओं की छमछम, बोल बम के जयकारे और उस पर से ये कड़कड़ाती बिजली और झमझम बारिश। ऐसा लग रहा है मानो खुद इंद्रदेव सावन के इस विदाई सप्ताह में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने की पूरी तैयारी के साथ धरती पर उतर आए हैं। कल से जो पानी बरस रहा है ना, मैं तो कहूँ कि परसों से जो पानी बरस रहा है ना, उसने शहर की उमस तो गायब कर ही दी है। साथ ही साथ गोदोलिया से लेकर लंका तक चाय की अड़ियों पर मलाई मार के कुल्हड़ वाली चाय और गर्म गर्म कचौड़ी जलेबी की चाहत को 4 गुना बढ़ा दिया है। आज यानी 26 अगस्त की इस रिमझिम सुबह भी बदरा पूरी तरह मेहरबान रहने वाले हैं। तो आज अगर आप दफ्तर, दुकान या बाबा के दरबार के लिए निकल रहे हैं ना, तो छाता रेनकोट साथ में जरूर रख लीजिएगा। और हाँ, गाड़ी जरा संभल कर धैर्य के साथ चलाइएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे बनारस की गलियों का मिजाज जितना रुमानी होता है ना, उतना ही थोड़ा फिसलन भरा हो जाता है। वैसे आज की ये तारीख अध्यात्म के साथ साथ और भी मायनों में बड़ी खास है। आज पूरा देश जहां महिला समानता दिवस मनाकर हमारी नारी शक्ति और आधी आबादी के हौसलों को सलाम कर रहा है, वहीं आज की ये सुबह ममता और करुणा की मूर्त भारत रत्न मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें भी शत शत नमन कर रहा है। प्रकृति का आशीर्वाद देखिए, इस पावन दिन पर अपनी पवित्र बूंदों से पूरी काशी को धन्य कर रही है हमारी प्रकृति।

तो बनारस, अब नींद का मोह छोड़िए, बिस्तर से उठिए, हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप थामिए, घर के झरोके पर आइए और सावन की इस ठंडी सुहानी बयार का आनंद लीजिए। आज के इस सुहाने सफर को और भी खूबसूरत संगीतमय बनाने के लिए मैं आपको सुनवाऊंगी एक प्यारा सा सॉन्ग। आप बस सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाबा के रंग में रंगे रहिए और भीगते रहिए इस खूबसूरत संगीत की बारिश में, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी के संग। बातें अभी और भी बहुत है, मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद।

वेलकम बैक बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस आकाशवाणी वाराणसी के संग। आज तारीख है 26 अगस्त यानी कि महिला समानता दिवस। वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो वो सिर्फ समाज को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आगे ले जाती हैं। और जब बात दुनिया से आगे अंतरिक्ष की हो तो भारत की बेटियों ने वहाँ भी अपना परचम लहराया है। आज महिला समानता दिवस के इस बेहद खास सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला वैज्ञानिक से जिन्होंने हमें उस ब्रह्मांड को देखना सिखाया जिसे हमारी आम आंखें नहीं देख सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम की, जो बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की पहली महिला डायरेक्टर हैं। केरल के पलक्कड़ की गलियों से शुरू हुआ एक सफर आज सितारों के पार पहुंच चुका है। प्रोफेसर अन्नपूर्णी को बचपन से ही आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना और उनके रहस्य जानना बेहद पसंद था। उन्होंने अपनी लगन से एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में कदम रखा उस दौर में जब इस क्षेत्र में महिलाओं की गिनती बहुत कम थी। उन्होंने परंपराओं और सामाजिक उम्मीदों के बीच अपने सपनों को सच कर दिखाया। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अन्नपूर्णी का काम क्या है? वो ब्रह्मांड में तारों के समूह, तारों के जन्म और उनकी गैलेक्सीज का अध्ययन करती हैं। जब भारत ने अपना पहला समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोसेट लॉन्च किया था तब उनके अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में सटीक तरीके से काम पर लगाने और उसकी जो जिम्मेदारी है ना, प्रोफेसर अन्नपूर्णी ने ही संभाली थी। यानी कि अंतरिक्ष में भारत की जो अल्ट्रावायलेट आंख है उसे तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी साल यानी अगस्त 2026 में प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने इतिहास रच दिया था। उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कॉस्पर विक्रमभाई साराभाई मेडल 2026 दिया गया है। ये पुरस्कार इटली के फ्लोरेंस में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। और सबसे गर्व की बात जानते हैं क्या है? वो इस मेडल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। पूरे इतिहास में वे इस सम्मान को पाने वाली दुनिया की सिर्फ तीसरी महिला और चौथी भारतीय हैं। है ना गर्व की बात? इससे पहले साल 2024 में भारत सरकार ने उन्हें स्पेस साइंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान श्री से भी नवाजा था। आज 3 दशकों से ज्यादा के करियर में 175 से अधिक रिसर्च पेपर लिखना और 15 से ज्यादा पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये दिखाता है कि उन्होंने न केवल खुद तरक्की की बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ते खोले। प्रोफेसर अन्नपूर्णी खुद कहती हैं कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी जगह खुद बनानी पड़ी। आज उनकी यही कहानी देश की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान, तकनीक या किसी भी क्षेत्र

में ऊंचे आसमान को छूना चाहती है। महिला समानता दिवस पर प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को हमारा शत शत नमन और सलाम है। आप भी अपने सपनों को छोटी सोच के पिंजरे में मत बांधिए, क्योंकि आसमान भी आपकी उड़ान के लिए छोटा पड़ सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल।

सावन के अंतिम सोमवार के बाद बाबा विश्वनाथ सपरिवार चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में सारनाथ पहुंचे। पालकी यात्रा के बाद सारंगनाथ मंदिर में 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया गया। सारनाथ के गंज इलाके के संकट मोचन मंदिर में 51 डमरुओं के निनाद के बीच पालकी यात्रा शुरू हुई। म्यूजियम मार्ग श्रेयांशनाथ जन्मस्थली और मूलगंध कुटी विहार होते हुए यात्रा सारंगनाथ मंदिर पहुंची, जहां प्रदोष काल में बाबा को झूले पर विराजमान कर 501 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया गया। वाराणसी के कबीरचौरा जिला महिला चिकित्सालय में मरीजों और तीमारदारों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ग्रीवांश रिड्रेसल समिति का गठन किया गया है। ये समिति स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करेगी, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस समिति के माध्यम से महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सेवाओं में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। चिकित्सालय में रोजाना बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और अन्य मरीजों का इलाज होता है। कभी कभी दवाइयों की उपलब्धता, स्टाफ के व्यवहार, सफाई या अन्य सुविधाओं को लेकर शिकायतें आती रहती हैं। अब इन शिकायतों को सीधे समिति के समक्ष रखा जा सकेगा। समिति नियमित बैठकें कर शिकायतों की समीक्षा करेगी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर 27 अगस्त को काशी में खेल और युवाओं से जुड़ा खास कार्यक्रम होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद आयोजित किया जाएगा। दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और युवाओं से खेल को लेकर बातचीत होगी। इससे खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने, नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर चर्चा होगी। 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर उनके सुझाव लिए जाएंगे। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए जान लेते हैं इतिहास में 26 अगस्त की खासियत। 26 अगस्त 1910 की तारीख इतिहास में भारत रत्न मदर टेरेसा के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार और पद्मश्री समेत विश्व भर के अन्य कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 1964 में भारत दौरे के दौरान पोप पॉल पंचम ने अपनी गाड़ी उन्हें भेंट की थी, लेकिन मदर टेरेसा अपने जीवन को पूरी तरह से जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी हैं। इसके अलावा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था आज के दिन। 1541 में तुर्की के सुलेमान ने बुडा और हंगरी को अपने कब्जे में लिया था। तो ये थी इतिहास में 26 अगस्त की खासियत। अब इसी के साथ कार्यक्रम को वाइंड अप करते हैं। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें एक निर्णय, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। जल्दी ही इनके लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 88,000 से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इस निशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा।
5: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित है, अब तो 8 लेन। आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाए और गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
4: मंत्रिपरिषद ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन

0: धन किया है। इसके अंतर्गत देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता पिता अपनी संपत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले एमबीबीएस के छात्रों का स्टाइपेंड 12,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 4,000 इंटर्न चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता को सराहनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अगले 6 माह में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
1: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजिए, हम भी अपने यहाँ नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों। 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
1: यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4,00,000 टन चीनी। हमारे पास मौजूद है 28,00,000 टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90,00,000 टन यानी 900,00,000 क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: बूथ लेवल ऑफिसर भारत के लोकतंत्र की आधारशिला। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए हुए।
0: प्रदेश भर में आज ईद ए मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। ये हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर लखनऊ सहित

प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन। कलाकार हैं मेघना कुमार, राग है अलहैया बिलावल। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं ज्ञान स्वरूप मुखर्जी।

कलाकार थी मेघना कुमार, राग था अलहिया बिलावल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ज्ञान स्वरूप मुखर्जी और इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा, जिन्हें रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में

0: ही नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने

0: और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसी

0: Infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiru Onam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% निफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में केरला से ताल्लुक रखने वाले लोग थिरु ओनम यानी ओनम के सबसे मुकद्दस दिन को भी मना रहे हैं। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कानात तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही इस तरह के मरबूत तरीकों का जायजा लिया जाए और इसके लिए तकनीकी और इक्तसादी इम्कानात को मलहूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील में तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम ने वजारतों रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने रेलवे सड़क और बिजली के शोबों से मुतालिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीटिंग में राबते के निजाम को मजबूत बनाने, सनअती और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने और सरकारी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में खासतौर पर मुकर्रर वक्त की पाबंदी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल, जेर इल्तवा मसाइल के हल और प्रोजेक्टों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान वजारतों और रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं और उन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील फ़ाल होने और उसके फवायद की फराहमी में ताखीर का सबब बन सकते हैं। जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फ़ाल और पेशगी इकदामात पर मबनी काम के कल्चर को फ़रोग देने पर भी जोर दिया ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल ज़रई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने ज़रई आदादोशुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मसनू जहानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सबका

0: दस्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर अब ईरान की जानिब से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुरमुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाजों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाजों ने उसकी इजाजत के बगैर आबनाए हुरमुज से गुजरने की कोशिश की थी। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह रंगारंग फेस्टिवल दुनिया भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल खुशी, इत्तेहाद और खुशहाली के जज्बे को मजीद फरोग दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पर्नम में पितरा देवी मार्टियस मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। ये यादगार गोवा की आजादी की जिद्दोजहद के लिए एक खराज तहसीन है और इसका मकसद आजादी की तहरीक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को महफूज बनाना है। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये यादगार उन 31 सत्याग्रह करने वाले लोगों को खराज अकीदत है जिन्हें 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने के मुतालबे के साथ दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुर्तगाली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इस यादगार को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि हाजरीन गोवा की सत्याग्रह तहरीक की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझ सके। तवक्को है कि यह यादगारी मकाम मालूमात और मकामी फख्र का एक ऐसा मरकज बनेगा जो नई नस्ल को गोवा की तारीख से जोड़ने में मदद करेगा। पनाजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि कौमी राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में प्याज और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो मरकजी हुकूमत के इदारे नैफेड से प्याज और चीनी खरीद कर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के लिए दस्तियाब कराएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि ये अशिया उसी कीमत पर फरोख्त की जाएंगी जिस कीमत पर उन्हें नैफेड से खरीदा जाएगा, जबकि नकलो हमल और दिगर मुतालिक अखराजात दिल्ली सरकार बर्दाश्त करेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी जिस दिन कम दौरानिये के मैच खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में प्रगनंदा का मुकाबला अमेरिका के फैबियानो कारवाना से होगा जो इस इवेंट के दिफाई चैंपियन हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दौरे चीन से मुतालिक खबरों को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, चीन के नायब सदर हान से मिले डोभाल, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर की बातचीत। दिफाई खुद इनसारी की जानिब भारत का बड़ा कदम, रिवायती मिजाइल निजाम की टेक्नोलॉजी भारतीय सनतों को मुंतकिल करने की मंजूरी। इस खबर को इनकलाब प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, वजीर दाखिला अमित शाह ने दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई, मफरूर मुजरिमों को मुल्क वापस लाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त हिदायत जारी की। आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस खबर को सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100%

0: میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم مدھورما۔
2: سواستھ فون ان کاریکرم آروگیم آپ سنتے ہیں پرتیک رویوار دن میں 11:30 پر اور مہینے کے آخری رویوار کو 2:30 پر۔ इस बार दिनांक 30 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत संबंधी रोग और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे इस नंबर पर 0542-222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
3: आपकी चाय।
4: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
5: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
9: बुकिंग है तो संपर्क करें
11: 0542227658,
12: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. आकाशवाणी वाराणसी से मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बनारस के घाटों पर सुबह की वो पहली किरण, गंगा की लहरों से उठती वो ठंडी बयार और हमारे भीतर गूंजती एक अनकही प्रार्थना, इन सब में एक ही सच छुपा है और वो है ऊपर वाला। हम जिंदगी भर उसे पत्थरों में, दीवारों में, मजहबों में ढूंढते रहे, पर वो तो हमेशा से हमारी हर सांस की रवानी में छुपा है। आज की मधुरिमा उसी अदृश्य शक्ति के नाम, जिसके कर्म के बिना शायद हमारी बहुत सी खुशियां अधूरी होती।

क्या बात है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। वाकई उस मालिक की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दोस्तों, एक और बात है जो मुझे शिद्दत से महसूस होती है, जब हम सुबह सुबह इस पवित्र शहर की फिजाओं को महसूस करते हैं तो एक तरफ दूर से गूंजती अजान की वो पाक आवाज़ सुनाई देती है और दूसरी तरफ मंदिर से आती घंटियों की वो सुरीली खनक। ये दोनों आवाज़ें भले ही अलग अलग हों, लेकिन जब ये हमारे कानों से होकर हमारी रूह तक पहुंचती हैं तो हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि उस मालिक का दर एक ही है और वो ताकत भी एक ही है। इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए भले ही नाम बदल दिए हों, पर उसकी रहमत हर बंदे के लिए बराबर है।

लेकिन सच तो ये है कि जब हम टूट जाते हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, तब हमारे भीतर से जो हौसला जागता है वही तो ऊपर वाले का साया है। वो हमें गिरने नहीं देता, वो कहता है कि उठ मुस्कुरा, तू मेरा बंदा है।

कितना प्यारा गीत था ये और कितनी गहरी बात है। मगर दोस्तों, आज के इस दौर में जब हम चारों तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान ने धर्म को एक धंधा बना लिया है। लोग भगवान के नाम पर अपनों से ही लड़ रहे हैं। ऐसे में मन व्याकुल हो उठता है और दिल से बस एक ही सवाल निकलता है कि ये मालिक, तूने तो हमें एक जैसा बनाया था, फिर ये दूरियाँ कैसी, तू आखिर है कहाँ। फिल्म पीके का ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि आज के दौर में भटके हुए इंसान की ईश्वर से एक सच्ची और बेहद भावुक पुकार है।

तो दोस्तों, आज मधुरिमा के सफ़र में हमने जाना कि ईश्वर को किसी आलीशान इमारत या मन्नत के धागों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भूखे को दिए भोजन में है, प्यासे को दिए पानी में है, और किसी रोते हुए को हंसाने में है, और आपके भीतर छुपे उस नेक इंसान में है जब हम किसी के निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा और प्रेम की बात करते हैं, तो आज एक बेहद खास शख्सियत को याद करने का दिन है। आज है 26 अगस्त यानी ममता, करुणा और सेवा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा का जन्मदिन। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने समाज के सबसे बेसहारा लोगों में उस परमेश्वर को देखा और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। उनका एक बहुत ही प्यारा विचार है कि हम सभी शायद बहुत बड़े काम न कर पाएं, लेकिन हम छोटे छोटे कामों को बहुत बड़े दिल से और प्यार से कर सकते हैं।

Madhurima, the sound of melody. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। जिले की हलचल आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
2: गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नियंताबाद विकास खंड के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुंडा खुर्द, सुल्तानीपुर, सहजौर और कैली सहित तटीय इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदियों से हो रहे कटान पर चिंता जताई। इस पर जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता बंदी से टेलीफोन पर वार्ता कर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी PDDU नगर को एक विशेष जांच कमेटी गठित कर कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण कराने और रोकथाम की ठोस योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां दुरुस्त कर लें। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित करें। इसके अलावा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा उनके चारे पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी PDDU नगर, खंड विकास अधिकारी नियंताबाद समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ की तैयारी को लेकर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी कि
3: नदी के जलस्तर को हम लोग सतत उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पर डे दो टाइम हमारी रिपोर्ट आती है और लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं कि जलस्तर का किस लेवल तक पहुंचा है। पूरी तरह सचेत है और हमारी तैयारी पूरी है। जितने भी हमारे टेंडर्स होने चाहिए थे वो सब हमने कर लिए हैं। जो भी बाढ़ के दृष्टिगत जन सामान्य को राहत पहुँचाने के लिए आवश्यक होता है उन सभी की टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
2: चंदौली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। राष्ट्रीय गान के उपरांत सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। जनपद में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास हर तरफ देखने को मिला। स्कूली छात्रों और युवाओं की टोली के देशभक्ति नारे से पूरा जनपद गुंजायमान रहा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायालय में जिला जज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में DRM के साथ ही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों एवं शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी दी गई। जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मारुपुर के नदेसर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमर शहीद चंदन राय के घर पर 70 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सूबे के श्रम एवं सेवा नियोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामना देते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के उद्बोधन का जिक्र करते हुए युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जुड़ जाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा यात्रा का शुभारम्भ कर यात्रा में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में जोश भर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने जनपद के अमर शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विश्व पटल पर मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। विगत दिनों राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने चंदौली के चहनिया विकास खंड में स्थित महालक्ष्मी महरौड़ी देवी धाम के सुंदरीकरण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 192.58 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना में मंदिर परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल व्यवस्था

0: साइनेज, यात्री बेंच, लैंडस्केपिंग, सोलर सिस्टम, बोरिंग के साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि
1: ये जो 1,92.58 लाख रुपए धन आवंटित हुआ है यहाँ के सुदृढ़ीकरण के लिए, वो उसमें बहुउद्देशीय हॉल से लेकर सोलर सिस्टम, बेंच की व्यवस्था, सुंदरीकरण और सुलभ प्रसाधन और अन्य कई चीजें इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि इस काम को होने के बाद न सिर्फ यहाँ इस गांव वासियों को, न सिर्फ चंदौली के लोगों को, बल्कि जो आसपास के जिले के लोग आते हैं उनको बड़ा ही यहाँ सुविधा मिलेगी, बड़ा ही लाभ मिलेगा।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का।
3: सावन माह में ललितपुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। जिले के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पाली के नीलकंठेश्वर भगवान मंदिर, तालबेहट के हजारिया देव मंदिर, चंडी माता मंदिर और तुमन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वही कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे। ललितपुर में चाइल्ड हेल्प लाइन की तत्परता से 1.5 साल की बच्ची को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया गया। बच्ची 18 अगस्त को पनारी रोड के पास मिली थी। सूचना पर चाइल्ड हेल्प लाइन PRB पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात बच्ची को परिजनों की तलाश पूरी हुई और उसे सुरक्षित परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया। जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में शहरिया और गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक धरातल पर पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मेहरौनी क्षेत्र में खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बुकिंग कराने वाले किसानों के लिए ई लॉटरी 21 अगस्त को होगी। जिला स्तरीय ई लॉटरी दोपहर 12 बजे विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लिए ई लॉटरी के जरिए लाभार्थी किसानों का चयन होगा। बारिश के बीच शहर में जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन आजादपुरा, तालाबपुरा और लक्ष्मीपुरा समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। नालों पर अतिक्रमण और उनमें गोबर, पॉलीथिन व घरेलू कचरा डाले जाने से जल निकासी बाधित मिली। संबंधित लोगों से अभिलेख मांगे गए। प्रशासन का उद्देश्य जल भराव की समस्या कम करना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। जिलाधिकारी जानकारी दी।
4: काफी सारे सड़कें मरम्मत हो गई है और इसको युद्ध स्तर पे पूरी सूची बनवा ली गई है कि सड़कें कहाँ कहाँ पे पाइपलाइन बिछने के बाद अभी मेंटेनेंस बाकी है, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। जो बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से जल्दी काम पूरा करा।
3: शिक्षा विभाग को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स और जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से 100% संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मद्देनजर स्कूलों के संपर्क मार्ग, परिसर, साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। साथ ही 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं रहने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आपदा के समय प्राथमिक सहायता, आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया। अधिकारियों ने नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल कराने पर जोर दिया। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सैमसंग और वीवो कंपनी के 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करता था और उन्हें बेचने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की जन सुनवाई जारी है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही फॉलो और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ललितपुर में सावन की भक्ति के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हैं। बच्चों की सुरक्षा, पोषण और शिक्षा से लेकर

0: आपदा प्रबंधन तक प्रशासन सक्रिय है। वहीं बारिश के दौरान जलभराव की समस्या के समाधान, किसानों को कृषि नियंत्रणों का लाभ दिलाने और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई जारी है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल समाप्त हुई।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना कोतवाली जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवांश श्रीवास्तव, इनकी माता का नाम रागिनी श्रीवास्तव, ये निवासी हैं नवापुरा लोहटिया कोतवाली वाराणसी के। ये दिनांक 2 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चले गए और तभी से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 24 वर्ष, कद 6 फुट 5 इंच, रंग गोरा। ये दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। अंतिम बार इन्हें हरे लोअर और कत्थई टी शर्ट में देखा गया था। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को सूचित करें। इसके साथ ही आप मोबाइल नंबर 9026900166 पर भी इनके बारे में सूचना दे सकते हैं। थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रूपा मौर्य, पिता का नाम स्वर्गीय मनोहर प्रसाद मौर्य, निवासी ग्राम बेला थाना चोलापुर वाराणसी। ये दिनांक 29 जून 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। लापता होने के समय ये सूट सलवार पहने थी। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार तमन्ना, पिता का नाम बादूराम, ये निवासिनी है छितौनी थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी की। ये दिनांक 9 मार्च 2026 से लापता हैं। तमन्ना के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 17 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, मजबूत जिस्म, रंग गोरा और चेहरा गोल है। लापता होने के समय ये सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे स्कर्ट पहने थी। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें।

एक और सूचना आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये सूचना है थाना कैंट जनपद वाराणसी से प्राप्त। हैदर रजा, पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद रजा, निवासी पुरा मनोहर दास अकबरपुर प्रयागराज, ये दिनांक 26 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 37 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग सांवला और चेहरा गोल है। लापता होने के समय ये लाल टी शर्ट और काला लोअर पहने थे। इसके साथ ही इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मानसिक रूप

से अस्वस्थ हैं ये। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने निकट के थाने को अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में ये सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए। माह रबीउल अव्वल की इन पुरबहार और पुरनूर साहतों में हम लेकर के हाजिर हैं एक खुसूसी तमसीली प्रोग्राम, उन्वान है चिराग़े इश्क़े अहमद से मुनव्वर हो गया जहां सारा। तहरीर, तहकीक और आवाज़ मोहम्मद फर्रुख जमाल की है। तो समाअत फरमाइए हमारी ये खास पेशकश।

भामे सहर नूर का पैकर आया, अर्श से फर्श पे रश्के महे अनवर आया, आसियो पाए मोहम्मद पे झुकाओ सर को, लो मुबारक हो तुम्हें शाफ़ए महशर आया।

सदियां थी मुंतजिर जिन मुबारक अय्याम की, आज वह हसीन घड़ी आ गई जिसके आमद की बशारत अंबिया इकराम ने दी थी, जिसकी तशरीफ आवरी का जिक्र आसमानी सहीफों में दर्ज है। वो जो दुआए खलीली है, वो जो नवेदे मसीह है, कुरान ने जिसको सिराजम मुनीरा बताया, जो यासीन भी है और ताहा भी, वो नूरे अजल वो पैकरे जमालो कमाल आज के ही दिन इस खाक दाने आलम पर जलवा फरोज हुआ। आमना बी के लखते जिगर आ गए, दोनों आलम के नूरे नजर आ गए, है जिनके सर पे ताजे शफात सजा, आज दुनिया में वो ताजवर आ गए। जख्म भर जाएंगे जिनके दीदार से, जख्म भर जाएंगे जिनके दीदार से, वो मसीहाए कल्बो जिगर आ गए।

वालिये दो जहां शहनशाहे कौनो मकां, सैयदे इंसो जां सरवरे लाला रुखां, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो जहालत के अंधेरे छट गए, कुफ्रो शिर्क की आंधियों में तौहीद का चिराग रोशन हुआ। वहशत व बर्बरियत की स्याह रात में अमन व मसावात का आफताब तुलू हुआ। इंसानियत को इज्जत मिली, गुलामों को वक़ार, बाग़ हस्ती में बहार आ गई, ज़हनो दिल की खुश खेतियाँ लहलहा उठीं। सरकारे दो जहाँ ने मिट्टी के ज़र्रों को, पानी के कतरों को, पहाड़ों की बुलंदी को, ज़मीन की पस्ती को और उमड़ते बादलों को सिर्फ और सिर्फ अपने इखलाक़े करीमाना से ज़ेर किया। आपने इखलाक़ो औसाफ़ की ऐसी सीरत पेश की कि आपके मुनकिर भी आपकी सीरत के कायल थे। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सीरत बेमिसल है।

0: वसल्लम वो मुकद्दस हस्ती हैं जिनकी आमद से इंसानियत को ईमान का नूर, इखलाक की रोशनी और ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल रास्ता नसीब हुआ। सलाम उस ज़ाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्रे दौरां पर, हज़ारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इमकां पर, सलाम उस पर जलाई शम्मे इरफ़ां जिसने सीनों में किया हक के लिए बेताब सजदों को जबीनों में, सलाम उस पर बनाया जिसने नूर से पुरनूर दुनिया, सलाम उस पर कि जिसके नुत्क से मशहूर है दुनिया, बड़े छोटों में जिसने एक अखुवत की बिना डाली, जमाने से तमीज़े बंदगी ओ आका मिटा डाली, सलाम उस पर जो है आसूदा ज़ेरे गुंबदे खजरा, जमाना आज भी है जिसके दर पर नासिया फरसा, सलाम उस ज़ाते अक़दस पर हयाते जावेदानी का, सलाम आज़ाद का आज़ाद की शीरी बयानी का।
1: ज़ुल्मत जहल के

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 पर और महीने के आखिरी रविवार को 2:30 पर। इस बार दिनांक 30 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत संबंधी रोग और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे इस नंबर पर 0542-222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
5: प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं सरोज वर्मा। इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं जतसार।

0: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में

अभी आप सुन रहे थे जत्सार, स्वर था सरोज वर्मा का। आकाशवाणी वाराणसी से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और सरोज वर्मा के ही स्वर में अब आइए सुनते हैं धुन मुनिया कजरी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धुनमुनिया कजरी, स्वर था सरोज वर्मा का, और इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 पर और महीने के आखिरी रविवार को 2:30 पर। इस बार दिनांक 30 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत संबंधी रोग और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे इस नंबर पर 0542-222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
2: जानकार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, हमारे भी दिल की हसरत होती है कि हम आपसे जुड़ें। ये जो गीत आपने सुना, ये था सैनिक फिल्म से कुमार सानू, और साधना सरगम की आवाज़ थी, समीर की ये रचना थी, और संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत भी आप सुनेंगे कुमार सानू और साधना सरगम की ही आवाज़ों में। फिल्म है जुर्म, और इंदिवर की रचना है और संगीत राजेश रोशन का।

कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वरों में गीत आपने सुना जुर्म फिल्म से। इंदिवर की रचना थी और संगीत था राजेश रोशन का। झनकार कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 90 के दशक के सदाबहार गीत।

फूल और कांटे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें आपने सुनी अलका याग्निक और कुमार सानू की, समीर की रचना और संगीत नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी।

चलते चलते फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत था अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था जतिन ललित का।

तर्ज बनाई थी जतिन ललित में। आकाशवाणी वाराणसी से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। अगला गीत आइए सुनते हैं रिफ्यूजी फिल्म से। आवाजें आप सुनेंगे अलका याग्निक और सोनू निगम की, जावेद अख्तर के बोल और संगीत अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे रिफ्यूजी फिल्म का गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। जावेद अख्तर की रचना है और संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम यस बॉस।

अभी आप सुन रहे थे यस बॉस फिल्म का गीत। आवाजें आपने सुनी अलका याग्निक और कुमार सानू की। अगला गीत साधना सरगम और अभिजीत की आवाजों में, समीर की रचना, आनंद मिलन का संगीत और फिल्म जिगर।

वो कैसेटों वाला दौर, वो दिल को छू लेने वाले गाने आज भी हमारे दिलों में वैसे ही ताजा हैं। 90 के दशक सिर्फ गानों का नहीं बल्कि हमारे बचपन, हमारी पहली मोहब्बत और मासूमियत की यादों का पिटारा है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है इस सुरीले पलों से विदा लेने का, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सलामी फिल्म का गाना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो आधारित होगा आपके ईमेल संदेशों पर।

0: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
1: हम गवन मनाही
2: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 पर और महीने के आखिरी रविवार को 2:30 पर। इस बार दिनांक 30 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत संबंधी रोग और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10 से 11 के बीच। तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे इस नंबर पर 0542-222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
3: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपके पसंदीदा गीतों के साथ हाजिर हैं। उन गीतों को आज हमने लिया है जिनके लिए आपने पहले ही हमें ईमेल संदेश भेजा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर, और सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हम दोनों फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत जयदेव का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

हम दोनों, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी जयदेव ने। और इस गाने की फरमाइश हमें भेजी बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। इसे गाने को सुनना चाहते थे कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय। पटेल नगर से इस गाने को सुनना चाहा सुनील कुमार सिंह ने। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें इस गाने के लिए ईमेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहाने। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से इस गाने को पसंद किया तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने इस गाने के लिए हमें ईमेल संदेश भेजा। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से इस गाने को सुनना चाहा निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आप सभी ने। चौटाला हरियाणा से इस गाने को सुनना चाहते थे दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी ने हमें संदेश भेजा पिंगा वाला चौक गौरैया जालंधर पंजाब से।

इसी गाने के लिए शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन का संदेश प्राप्त हुआ। मजनू का टिल्ला दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने इस गाने को पसंद किया। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आयान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, और गीत लिखा था कौशल मुनीर ने, संगीत से सवारा था प्रीतम ने। इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे इसी गाने को सुनना चाह, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने। तेलंगाना भोंगीर से इस गाने को सुनना चाहते थे मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन। इसी गाने को सुनना चाहा गांव बांडीवाला फजल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। बजरंगी भाईजान का ही ये गाना सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से इस गाने को पसंद किया सईद भाई, सोफियान, अनस, आयजा, सरोज चौक से कमरुल्ला और नसीम बेगम, आयशा खान और हादिया खान ने इस गाने को सुनना चाहा।

इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और इनका प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी।

इसी गाने के लिए जेवरा हिसार से हमें मेल भेजा वीरेंद्र सुरेंद्र शमशेर मनोज, आप सभी श्रोताओं का हमें मेल प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र से गंगाधर स्वर्णकार, विजय लक्ष्मी स्वर्णकार, राजेश राकेश और रिशिता का मेल प्राप्त हुआ। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है एक लड़का एक लड़की। आवाजें हैं कुमार सानू की और साधना सरगम की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलिंद का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

एक लड़का एक लड़की इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का संगीत से सवारा था आनंद मिलिंद ने। और इस गाने के लिए हमें मेल भेजा मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी ने इस गाने को पसंद किया था। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय आप सभी ने। इसी गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ लदावली जिला मुरादाबाद से। लिवाई छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। इसी गाने के लिए संदेश भेजा सिद्धार्थ नगर दरियापुर वावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और नीलेश येले। झारखंड से इस गाने को पसंद किया शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता और लिपि गोप ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और संजय अंशु वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से इस गाने को पसंद किया मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन सरण कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा।

मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना, तिरंगा फिल्म से। आवाज साधना सरगम की है, गीत संतोष आनंद का, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने तिरंगा फिल्म का ये गाना।

तिरंगा फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम की आवाज में। गीत लिखा था संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल।

जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा।

तिरंगा फिल्म का ही ये प्यारा सा गीत सुनना चाहते थे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस गवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहकर। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से इस गाने को पसंद किया अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, आप सभी ने।

इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह, चांदमारी से वंदना चौबे। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से इस गाने को सुनना चाहते थे विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। पाकुड़ झारखंड से इस गाने के लिए संदेश भेजा उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु ताशु, अरणवानंद और सत्यमानंद ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे बोहड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा बनवारी लाल कुशवाहा, मंजू लाल कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा और साथी। आप सभी ने इस गाने के लिए मेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश शाहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान ने हमें संदेश भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना।

सच्चा झूठा इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। ताजपुर कुर्रा दिलदार नगर से अर्जुन सिंह यादव सुनना चाहते थे इस गाने को, और इसे गाने के लिए हमें संदेश भेजा ग्राम भट्टी पोस्ट सकरडीहा चंदौली से इमरती यादव ने, और करौता वाराणसी से इस गाने को सुनना चाहते थे अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति। आप सभी ने इस गाने के लिए हमें मेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे टीचर्स कॉलोनी बस्ती उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र पांडे, ममता पांडे, सिद्धि पांडे, आदित्य पांडे और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गाने के लिए हमें मेल भेज

हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, आप सभी ने हमें मेल भेजा माँ काली स्थान नवली गाजीपुर से। ग्राम बागमुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया। प्रज्ञा नंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन।

मुबारक पुरू जी तक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुडाना। और सुदामा नगर खंडवा से इस गाने को पसंद किया लक्ष्मी नंदिनी रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने।

तालुका पंढरपुर से इस गाने को सुनना चाहते थे जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुवान मुलाणी, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और पूरा मुलाणी परिवार। मोर टक्का माफी जिला खंडवा से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल ने।

इसी गाने को सुनना चाहते थे। कुंभार कली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुंभार। पोटिया कला दुर्ग से इस गाने को पसंद किया संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू।

इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा भोईना पार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता गीतिका चंचल रानी साहू, त्रियांश कुमार साहू और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने।

इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सुनौसी विश्वकर्मा, सुनौली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, आप सभी ने।

और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना बेईमान फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत वर्मा मलिक का, संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

बेईमान फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने, और इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने हमें मेल भेजा। मलियान सरधना मेरठ से इस गाने को सुनना चाहते थे। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और आपके परिवार के सभी सदस्य इस गाने को सुनना चाहते थे।

इसी गाने के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, कीर्ति और भारती। आर्यनगर कोहका भिलाई से इस गाने को सुनना चाहते थे उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंगेल।

वार्ड नंबर 16 नवाज कॉलोनी इंदौर से इस गाने को सुनना चाहते थे। पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी और कुमारी मराठा भाव, मराठा ललिता, जगदीश चौहान, चंदासो युवराज, वानखेड़े, आप सभी ने हमें संदेश भेजा इसी गाने को सुनने के लिए।

एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, आप सभी ने हमें मेल भेजा इस गाने को सुनने के लिए। इसी गाने के लिए मेल प्राप्त हुआ पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, हम्मद जमील और बेबी अरीबा हबीबा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमें मेल किया है आप सभी श्रोताओं ने रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ।

महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे किशोर वडलकर, शुभम वडलकर और पुन्नू वडलकर। इसके साथ ही दीजिए इजाजत, कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की स्वस्ति श्रीवास्तव को। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मिंग

0: हापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
0: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
0: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
0: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
0: जी,
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है।

0: दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हल्ले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों अजीत जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी
1: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हल्ले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: आह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा कर

0: करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों

0: बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक

0: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
1: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
0: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
2: माँ माँ, पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है।
3: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
4: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
3: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
4: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
0: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
4: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
5: जी हाँ।
4: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
6: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
5: हाँ हाँ, उपाय बताइए।
4: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
5: ग्राम सभा?
6: ठीक है।
5: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
4: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
5: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
4: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
7: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
8: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
4: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
9: वो कैसे?
5: क्या गड्ढा बनाना है?
10: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
6: फिर इसकी क्या जरूरत है?
9: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
4: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
6: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
10: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें भी बताओ।
4: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
6: सिंचाई टैंक?
10: सिंचाई टैंक,
4: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे, ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
5: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
7: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो

खो माजरी गांव में हुआ, वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
8: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
9: हम गवन मना ही जाए बिना रे झूलनी। हम गवन मना ही जाए बिना रे झूलनी।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं समृद्धि गुप्ता। आइए सुने इनके गाए हुए भजन। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनका गाया ये भजन, रचना मीराबाई की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं समृद्धि गुप्ता के गाए भजन। आइए सुनते हैं इनका गाया अगला भजन, रचना कबीर दास की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समृद्धि गुप्ता के गाए भजन। इसके साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेघना कुमार का गायन। राग है मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ज्ञान स्वरूप मुखर्जी। आइए सुने मेघना कुमार का गाया राग मधुवंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेघना कुमार का गाया राग मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ज्ञान स्वरूप मुखर्जी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जोड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन

0: फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना श्योपुर जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहित तिवारी, जिनके पिता का नाम है धनंजय तिवारी, पता है इवेंट विला नियर चांदमारी रिंग रोड वाराणसी, ये पिछले कुछ महीनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 25 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 9 इंच है। घटना के समय इन्होंने गुलाबी रंग की टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, मोबाइल नंबर 9454404399। इस पते पर आप सूचित कर सकते हैं। थाना कोतवाली जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार विवेक सेठ, जिनके पिता का नाम है राजेश सेठ, पता है K66/45 नरहरपुरा लोहटिया वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा है और घटना के समय इन्होंने शेरवानी और दुपट्टा पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना कोतवाली जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, मोबाइल नंबर है 6394-368710, इन नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा मेघना कुमार का गायन। वटवृक्ष कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आपको सुनवाएंगे रात 9:30 पर। रात 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समृद्धि गुप्ता के गाए भजन। अंग्रेजी कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:00। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर राजेश कुमार की वार्ता, जिसका विषय होगा पत्ता गोभी की खेती। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे सरोज वर्मा के गाये लोकगीत का। इन्हीं के गाये लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, फिल्म संगीत और मार्गदर्शन के अंतर्गत कानून के क्षेत्र में करियर के नए विकल्प विषय पर डॉक्टर अंजलि अग्रवाल की वार्ता। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 से। बहने अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में दिन में 1:15 पर गीत संगीत सेहत ज्ञान और जायका के साथ ही सुनेंगी डॉक्टर दीपक मिश्रा से की गई बातचीत, जिसका विषय होगा नेत्रदान का महत्व और प्रक्रिया। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 5:00 से शाम 6:10 से। शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: हरिद्वार तक तौसी देने की तजवीज भी मंजूर की गई। मीटिंग के बाद वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने कहा कि मुजव्विजा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन के साथ तामीर किया जाएगा, जिसे मुस्तकबिल में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
1: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर और उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
0: काबीना ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में एक मरबूत मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर कायम करने की तजवीज को भी मंजूरी दी। रियासती हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों के बावकार जिंदगी को यकीनी बनाने और उनके हकूक के तहफ्फुज़ के लिए उत्तर प्रदेश वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और बहबूद के उसूल 2014 में अहम तरमीम किया है। इस तरमीम के तहत अब बूढ़े वालिदैन उन बच्चों को आसानी से अपनी जायदाद से बेदखल कर सकेंगे जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनके साथ ज्यादती करते हैं। हिंदुस्तान के डिजिटल अदायगियों के निजाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 साल मुकम्मल हो गए। 2016 में शुरू किया गया UPI ने अपने बेमिसाल पैमाने और काबिले एतमादी के जरिए आलमी सतह पर पहचान हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने UPI की दिहाई तवील कामयाबी की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने साथी शहरियों से अपने UPI के तजुर्बात शेयर करने की अपील करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को UPI की वसी रसाई और तौसी पर फख्र करना चाहिए। UPI के जरिए लेन देन का हुज्म तकरीबन 13,000 गुना बढ़ गया है। नबी करीम मोहम्मद साहब का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी आज मुल्क और रियासत भर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ, अमरोहा, पीलीभीत, फरुखाबाद और रियासत के मुख्तलिफ अजला में जलसे मोहम्मदी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। नबी करीम मोहम्मद साहब की सीरत और तालीमात पर मीलाद की महफिलें और सीरत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जा रहा है। इस जुलूस को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश का माहौल है। जुलूस मोहम्मदी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस्लामी झंडे और तिरंगा उठाए हुए हैं और नबी करीम की शान में नातें पढ़ी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज जुलूस पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल कर रही हैं। लखनऊ में आज बरोज हफ्ता जुलूस के पुरमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमन व कानून बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस की हिफाजत के लिए 57 गजेटेड अफसरान समेत कुल 2,989 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी मकासद के लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 23 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। तरती पार बलिया में दरियाए घाघरा और बदायूं में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब तक 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने आज रियासत में कई मकामात पर गरज चरम के साथ मगरबी इजला में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सिम्मी का नमस्कार और सोनी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार और सिम्मी जी आपको भी नमस्कार।
0: सोनी, हरे भरे सावन और बारिश की फुहारों के साथ सावन का आनंद भी ले रही हैं या सिर्फ काम में ही व्यस्त हैं?
1: नहीं भाई, काम तो है, सभी के पास है, पर उसमें से थोड़ा वक्त निकालकर अपने लिए मैं दर्शन पूजन की, व्रत उपवास की और बहुत ही घूमी फिरी और बारिश में भी भीगी हूँ।
0: भाई, अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। और जब हम अपने लिए समय निकालते ना, तो उससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है।
1: और सिम्मी, स्वस्थ, देखिए जैसे हर चीज का आनंद लेने के लिए स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें अपने शरीर का

0: ही ध्यान रखना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। और देखिए, हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो हमें इस रंग बिरंगी दुनिया से अवगत कराता है, और वो महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें हैं, जिनसे हम ये दुनिया देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और ये आंखें तो ईश्वर का अनमोल तोहफा है हमारे लिए, और इन्हीं आंखों से हम दुनिया को अपनों को देखते हैं और महसूस करते हैं। और ये भी कई बार होता है कि हमारी आंखें जैसे हमारी भावनाओं को भी प्रदर्शित करती हैं।
1: बिल्कुल, जो आंखें ही हैं जो हमें खूबसूरत ये दुनिया दिखाती हैं कि हमारे चारों तरफ हरे बड़े पेड़ पौधे, नीला आकाश, कलकल बहती नदियाँ और ऊंचे पहाड़, सब कुछ कितने मनमोहक हैं। इसलिए इन आंखों का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। आंखें स्वस्थ रहें और सभी के पास आंखें भी रहें, इसलिए हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी मनाया जाता है।
0: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करना है, और जैसे समाज में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं उनको मिटाना भी है, और मरणोपरांत आंखें दान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना भी है।
1: बिल्कुल सोनी, हम लोगों के बीच से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्म से या फिर किसी अन्य कारण से दृष्टिविहीन हो गए। ऐसे लोगों के लिए पूरी दुनिया रंगहीन और अंधेरी है। इन लोगों के जीवन में उजाला केवल नेत्रदान से ही संभव है, तो नेत्रदान जरूर करें। क्योंकि देखिए ना, जब थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट चली जाती है या अंधेरा हो जाता है तो हम तुरंत रोशनी जलाते हैं ताकि हम सब कुछ ठीक से देख सकें।
0: और इसीलिए देखिए सखियों की, जैसे कि अगर हम अगर हमारा जीवन समाप्त हो रहा है और उसके पहले अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे कि किसी के अंधेरे जीवन में उजाला हो सकता है, रोशनी हो सकती है, तो हमें अपनी आंखें दान करनी चाहिए। और ये नेत्रदान जो है सिम्मी, इसको महादान कहा जाता है, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं।
1: बिल्कुल
0: है।
1: ऐसे हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आंखों की जरूरत है लेकिन जरूरत के अनुसार उतनी आंखें उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये पुण्य काम ही है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। और जानती हो, नेत्रदान की प्रक्रिया में ना पूरी आंखें नहीं निकाली जाती है, मृत्यु के पश्चात सिर्फ कॉर्निया ही निकाला जाता है जो दो लोगों की दुनिया में रोशनी ला सकता है।
0: और इसे निकालने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन नहीं है सिम्मी, जैसे इसमें 4-6 घंटे के भीतर आंखें निकाल दी जाती हैं, और आंखें निकालने में केवल 10 से 15 मिनट समय लगता है, और किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति नेत्रदान अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो सखियों, आप भी आगे बढ़े और किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी की वजह बने।
1: बिल्कुल, और नेत्रदान का संकल्प लें क्योंकि नेत्रदान महादान है। और सखियों, इन झील सी गहरी आंखों में कोई डूबना चाहता है तो कोई खोना चाहता है, और कोई इन्हें देखकर सब कुछ भूलना चाहता है।
0: और किसी किसी की आंखें तो इतनी खूबसूरत होती है कि बस ये मन करता है कि बस उसे देखते ही रहे, है ना सिमी।
1: कुछ इस गीत की तरह।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: सखियों, आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व भी मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है।
5: सखियों, त्योहारों की भागदौड़, काम की भागदौड़, इस व्यस्त जीवन शैली में लंबे समय तक बैठकर काम करने से और कई बार गलत पोस्चर की वजह से भी रीढ़ की हड्डी की समस्या में साइटिका की परेशानी काफी बढ़ जाती है, जिसे हम नियमित योग एवं होम्योपैथी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं।
4: तो सखियों को एक बातचीत सुनवाते हैं सिमी। बातचीत का विषय है साइटिका का यौगिक एवं होम्योपैथी प्रबंधन। डॉक्टर हरे राम पांडे से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
6: सभी सखियों को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरेराम पांडे, जो होम्योपैथिक चिकित्सक और योग प्रशिक्षक हैं। आज उनसे हम चर्चा करने वाले हैं कि साइटिका क्या है, ये किस कारण से होता है और लक्षण क्या हो सकते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: बहुत धन्यवाद।
6: अक्सर हम महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि पैरों में

0: अनजाना सा दर्द है, समझ नहीं पाती कि वो दर्द किस कारण उठ रहा है, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, और अंततः पता चलता है कि उक्त महिला साइटिका से ग्रसित है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि साइटिका क्या है?
1: साइटिका जो है एक साइटिक नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले भाग से हमारी जो मेरुदंड है
0: जी
1: उस मेरुदंड के सबसे निचले भाग से दो नसें निकलती हैं जो दाहिने और बाएं पैर दोनों में नितंब होते हुए पीछे से नीचे की तरफ जाती हैं। और उसमें ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है और इसमें जो है किसी भी तरह मतलब ये नर्व जो है इसमें दर्द होने के चलते हम देखते हैं कि दिव्यांगता की भी स्थिति बन जाती है। ये कभी कभी इतना तेज जिसको भी दर्द होता है तो चलने में इतनी परेशानी होती है कि हम एक कदम भी मतलब चल नहीं पाते हैं। ये इस तरह की स्थिति होती है। इसमें झुनझुनी भी होती है, सुन्नपन भी कुछ किसी किसी केसेज में देखने को मिलता है
0: जी
1: कि वो सुन्न भी हो जाता है। इससे ज्यादा समस्या होती है।
0: साइटिका होने के कारण क्या है? सिर्फ साइटिक नर्व का दबना ही क्या एकमात्र कारण है?
1: ये साइटिक नर्व दबता मुख्य रूप से तो कारण तो वही होता है कि कहीं ना कहीं दबने के चलते या उसमें खिंचाव होता है या फिर जो है उसमें गैप जैसे हमारे स्लिप डिस्क हम की केसेज में डिस्क में भी जो वर्टिब्रा होते हैं उसमें अगर
0: जी
1: गैप बढ़ता है घटता है तो कारण तो उसके जैसे एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटल केस में भी होता है। हम वायुयान में तेज गति द्रुत गति के ट्रेनों में वाहनों से या सड़कें खराब हैं मतलब ट्रेवल करने से जो जर्क होता है विशेषकर महिलाओं में जब गर्भवती होती हैं महिलाएं तो उस स्थिति में जो उनका पेट बाहर निकलता है जो डिस्टेंशन होता है एब्डोमिनल जो है जब प्रेगनेंसी के पीरियड में वो आगे की तरफ बढ़ता है तो जनरली वो पूरा उसका वजन जो है वो वजन से हमारा स्पाइन आगे की तरफ खींचता है। वो
0: जी
1: खींचने के चलते वो नीचे जो है वो डिस्क के एरिया में जो है वो कहीं ना कहीं दबाव होता है कहीं ना कहीं खिंचाव होता है और उसके चलते जो है महिलाओं में ज़्यादा इसकी संभावना रहती है। और जनरली अगर नॉर्मल डिलीवरी की स्थिति में हम देखते हैं तो जब नॉर्मल सामान्य डिलीवरी होती है उस पीरियड में हम देखते हैं कि जब उनको जब दर्द लेबर पेन होता है जो प्रसव का दर्द होता है जो ज्वाइंट है मुख्य तो उसमें क्या है कि वो माने इधर उधर इतना असह्य दर्द होता है कि इनके इधर उधर घूमने के चलते उसमें एक अलग तरह का खिंचाव आता है जिससे वो डिस्प्लेस भी होता है और उसके चलते वो नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो उस स्थिति में महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
0: अच्छा, और इसीलिए अक्सर महिलाओं में साइटिका दर्द की शिकायत ज्यादा देखी गई है।
1: साइटिका इसके लो बैक पेन भी मन साइटिका भी लो बैक पेन में एक साइटिका का दर्द भी एक प्रमुख कारण होता
0: जी
1: है। लेकिन जनरली लो बैक पेन जो है में और भी चीजें आती हैं उसके कई और कारण हैं। महिलाओं में दो कारण जो मैंने बताया कि एक तो डिस्टेंशन होता है उसमें स्पाइन आगे की तरफ झुका रहता है और वो कंटिन्यूअस जो है वो 9 मंथ तक वो लोड वो बियर करती हैं उसको
0: जी
1: ढोती हैं वो लेके चलती हैं तो उस कंडीशन में मतलब वहां पे पूरा जो है वो कमर की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है उसकी पूरी
0: बिल्कुल
1: रचना और क्रिया की स्थिति पूरी बदल जाती है।
0: जी सर,
1: जी
0: तो साइटिका के लक्षण क्या हैं मुख्य रूप से?
1: मतलब ये साइटिक नर्व होता है वो स्पेसिफिक उस साइटिक नर्व में अगर दर्द होता है तभी हम उसको साइटिका कहते हैं।
0: तो कैसे हम जानेंगे कि हमें साइटिका का ही दर्द
1: हाँ
0: उठ रहा
1: बिल्कुल।
0: है?
1: तो ये जो है ये दर्द जो है कमर से लेकर के और स्पेसिफिकली उसको आइडेंटिफाई किया जा पहचाना जा सकता है कि एकदम वो कमर से निकल करके और एकदम नितंब के बीच से वो एकदम ठीक घुटने से होते हुए नीचे की तरफ आती है।
0: तो सर, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को ज़्यादा समस्या इसकी होती है, कारण आपने बता दिया,
1: जी
0: तो क्या इसका उपचार संभव है?
1: बिल्कुल उपचार संभव है। इसका उपचार संभव है और पूरी तरह जो है उपचार के माध्यम से इसको पूरी तरह से जो है मतलब आरोग्यता को प्राप्त किया जा सकता है।
0: सर, जैसा कि आप होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो होम्योपैथी में इसका उपचार किस तरह किया जा सकता
1: जी
0: है?
1: जी होम्योपैथी में मुख्य रूप से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी जो है वो लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है।
0: जी
1: लक्षण में एक ही तरह के दर्द में जो है वो अलग अलग तरह की दवाइयों के प्रयोग होते हैं। तो दर्द किस प्रकार का है उसकी प्रकृति दर्द की क्या है वो किस तरह से जो है मतलब उसकी मोडलिटी

0: मतलब क्या है, तो उसमें जनरली कुछ कॉमन दवाइयां हम बताना चाहेंगे जिनको कि सामान्यतया जो होम्योपैथी में प्रयुक्त होती हैं। अब तो कुछ पेटेंट दवाइयां भी बहुत सारी कंपनियों की आ गई हैं, उनसे भी लाभ होता लोगों को। तो होम्योपैथी जो है काफ़ी कारगर है
1: जी
0: इस बीमारी में, और बहुत ही अच्छी हीलिंग माने पूर्ण आरोग्यता जो है होम्योपैथी की दवाइयों से हो जाती हैं। और होम्योपैथी के माध्यम से अगर हम अच्छे किसी योग्य चिकित्सक की देख रेख में अगर हम सलाह लें और उसका इलाज कराएं तो निश्चित रूप से इससे फायदा होगा।
1: बिल्कुल सर, होम्योपैथी के अलावा आप योग प्रशिक्षक भी हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरह योग साइटिका पेन से राहत दिला सकता है।
0: जी, देख चूंकि आज हम लोग इतनी हमारी व्यस्त जिंदगी है और हमारा पूरा इतना व्यस्त लाइफ स्टाइल और हमारा पूरा इस तरह का तनावपूर्ण जो है, एक हम जनरली अपने बहनों को माताओं को देखते हैं कि वो गलत पोस्चर्स में बैठती हैं। गलत पोस्चर्स में मतलब बैठने का मतलब ये है कि हमारा पोस्चर बैठने का सही तरीका है कि कमर और गर्दन सीधा होना
1: जी
0: चाहिए,
1: जी
0: लेकिन हम देखते हैं कि हम जैसे लेट करके टीवी देखने की आदत होती है। मतलब ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम जितने टाइम बैठते हैं उतने टाइम पूरे बॉडी का वेट अपने हमारे कमर पे आता है,
1: बिल्कुल
0: और ये कमर पे दबाव होने से जनरली डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, और ये एक प्रमुख कारण साइटिका का है। तो
1: जी
0: हम इसके माध्यम से एक तो ये है कि दैनिक जो तनाव आदि हैं, तो आप योग में जो है इस तरह की व्यवस्था है, योगाभ्यास के माध्यम से हम जो भी उसके अभ्यास हैं उन अभ्यासों के माध्यम से हम पूरे इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, घटेगा। दूसरा जो है वो जो अभ्यास हैं योग के
1: जी
0: अभ्यास हैं, तो हम कि साइटिका के मरीजों के लिए स्पेसिफिक जो है मतलब प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए हैं, तो एक 30 मिनट का, 25 मिनट का, अगर 15 से लेकर के और 30 से 35 मिनट का अगर हम उसको अभ्यास करें
1: बिल्कुल
0: तो निश्चित रूप से उसमें कुछ आसनों के हम नाम बता सकते हैं जो
1: जी
0: जिनको कि हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको ज्वाइंट मूवमेंट्स के, अपने जो भी ज्वाइंट कमर गर्दन का हो गया, कमर का हो गया, बाकी जो ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स का, कमर का, घुटने का, इन सब ज्वाइंट्स के छोटे छोटे मूवमेंट के लिए जो है उसको हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के
1: जी
0: नाम से
1: जी
0: जानते
1: जी
0: हैं।
1: कंधे हो
0: तो
1: गए
0: हाँ, जो
1: आपके,
0: जोड़ हैं, जितने
1: टखने
0: हमारे
1: हो गए,
0: जोड़ हैं,
1: हाँ
0: जितने भी जोड़ हैं हमारे शरीर के, तो उनके सबसे पहले हम 5 से 7 मिनट का जो है उन ज्वाइंट्स के मूवमेंट का जो है समय जितना रहे उसके हिसाब से हम ज्वाइंट मूवमेंट करेंगे। उसके बाद जो है आसनों में जो साइटिका के लिए जो सबसे उपयुक्त आसन जो कुछ बताए गए हैं, तो हम उसको भुजंगासन, जैसे भुजंग माने कोबरा पोज उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, भुजंगासन है, तो भुजंगासन को कर सकते हैं। भुजंगासन को करने से काफी लाभ होता है।
1: जी
0: फिर हम बात करें सेतुबंध आसन है एक, तो सेतुबंध आसन से भी बहुत फायदा होता है। सेतुबंध आसन जो है वो करने का है कि हम पीठ के बल लेट कर करते हैं, भुजंगासन को पेट के बल लेट कर करते हैं। उसी तरह से हम आसनों में सुप्त ताड़ासन, जैसे खड़े
1: जी
0: होकर ताड़ासन हम करते हैं, तो हम सेम मतलब पोस्चर को पीठ के बल लेट करके और पूरे मतलब अपने पैरों के पंजों को आगे की तरफ खींचते हैं और हम अपने हाथों को लॉक करके और पीछे की तरफ खींचते हैं, जैसे हम ताड़ासन में खड़े होकर करते हैं, उसको सुप्त ताड़ासन के रूप
1: हमें लेट
0: में
1: कर करना
0: लेट
1: है।
0: करके हम
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: अपने
0: फिर
1: शरीर को जितना हम खींच सके,
0: स्ट्रेचिंग में
1: स्ट्रेचिंग
0: मेन
1: है।
0: वो
1: जी
0: स्ट्रेचिंग का वो है। दूसरा जो है हम धनुरासन भी इसमें काफी लाभदायक है। इसके बाद जो है हम पेट के बल लेट करके मकरासन,
1: जी
0: मकरासन
1: जी
0: हम कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम जो है भी हमें अनुलोम विलोम हम प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भ्रामरी कर सकते हैं,
1: जी
0: और कुछ प्रेयर्स वगैरह, चूंकि जनरली योग के अभ्यास हम जब भी करते हैं तो उसकी शुरू में और अंत में जो है हम कुछ प्रार्थना, ओम चैंटिंग आदि से करते हैं, तो हमारे पास जितना समय हो उस समय के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं।
1: ये तो योग और होम्योपैथिक द्वारा उपचार की बात हो गई साटिका के लिए।
0: जी
1: सर, क्या खान पान का भी विशेष ख्याल रखना पड़ता है?
0: जी जी वायु विकार के चलते भी ये होता है। हम आयुर्वेद के सिद्धांत से चाहे होम्योपैथी के सिद्धांत में भी उस बेस पे होम्योपैथी का औषधियों का प्रयोग किया।

0: जाता है तो उसमें देखा जाता है कि अगर वायु विकार है, अगर मतलब गैस से संबंधित बादी चीजें, अगर गैस ज्यादा बन रहा है और पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में भी ये, और दर्द जो है, जब जनरली क्या होता है कि जब गैस बनता है पेट में, वायु भरता है, तो उससे जो है वो कमर आदि में भी खिंचाव आता है,
1: जी
0: तो वो प्रभावित करता है उसको। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम औषधि जो है ये साथ साथ खान पान पर जरूर ध्यान दें, समय पर हम नाश्ता भोजन समय पर लें, बादी चीज जो है जो वायु विकार बढ़ाती हैं उस तरह के चीजों का भोजन में हमें परहेज करना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर जो है पानी एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, और पेट सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब्ज ना हो। कब्ज को दूर करने से संबंधित जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चूंकि ऐसे भी आहार को औषधि कही गई,
1: जी
0: आहार औषधि है, तो निश्चित रूप से अगर हम आहार के माध्यम से भी पूर्ण आरोग्यता में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारा खान पान भी सही हो, आहार भी सही हो, तो इससे और भी शीघ्रता से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
1: बिल्कुल। तो सखियों, उचित आहार द्वारा साथ ही साथ योग और होम्योपैथी के उपचार के साथ हम साइटिका के दर्द से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। डॉक्टर हरिराम पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी सखियों को साइटिका के बारे में इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत आभार।
2: सखिया सुन रही थी अभी बातचीत, साइटिका का योगिक एवं होम्योपैथी प्रबंधन डॉक्टर हरिराम पांडे से बातचीत कर रही थी आकांक्षा सिंह।
3: सिमी, देखिए कि ये त्यौहार तो चल ही रहे हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आगे आने वाला है, और हम त्यौहारों पर तो बाहर से तो मिठाइयाँ वगैरह लेते ही हैं, लेकिन अगर त्यौहार पर अगर घर में कुछ मीठा बनाए और बनाकर खिलाए तो हमारे जो त्यौहारों की मिठास है वो और भी बढ़ जाएगी, है ना।
2: बिल्कुल, और घर की बनी चीजों की तो बात ही अलग है। तो सखियों को आज हम नारियल ड्राई फ्रूट रोल की रेसिपी बता देते हैं जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। तो सखियों नोट कीजिए इसकी सामग्री। नारियल का बुरादा 2 कप, मिल्क पाउडर 1 कप, पिसी हुई चीनी आधा कप, दूध 2-3 चम्मच, कटे हुए ड्राई फ्रूट थोड़े से, इलायची पाउडर आधा चम्मच। सखियो, सबसे पहले एक बर्तन में नारियल का बुरादा, मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी को थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए नरम आटे की तरह गूंथ लें। अब इस मिक्सचर को अलग रख दें और दूसरे मिक्सचर में ड्राई फ्रूट इलायची पाउडर में थोड़ा सा ये जो मिक्सचर है इसे लेकर अलग रख लें। एक बटर पेपर या चिकनी पॉलिथीन पर भी थोड़ा सा घी लगाकर जो हमने सादा वाला डो बना के रखा है ना उसे बेल लें। फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वाला जो हमारा मिक्सचर है उसे अच्छे से सेट करके एक टाइट रोल बनाना है, और फिर उसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से बाद थोड़ी देर बाद जब हम निकालते हैं तो गोल गोल स्लाइस में काट लें। आपके स्वादिष्ट नारियल ड्राई फ्रूट रोल तैयार हैं।
3: भाई सिम्मी, मेरे मुंह तो पानी आ गया, और इस मीठे के साथ मीठा मीठा गीत भी सुन लेते हैं।

0: हरियाली का है और इस मौसम में पक्षियों की चहचहाट तो बढ़ भी जाती है और वो अपनी बोली में हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। पर हम माओ की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे अपनी मन की करते हैं, कुछ कहो तो जल्दी सुनते नहीं हैं बल्कि अनसुना कर देते हैं।
1: ये शिकायत तो सभी के घरों में है भाई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बातें सुने तो सिमी हमें उनकी भी बातें सुननी होगी।
0: बिल्कुल,
1: एक दोस्त की तरह उनकी बातों को जानना होगा। अगर हम उनके दोस्त बन के रहेंगे तभी बच्चे हमसे खुल के बात कर सकेंगे, अपनी जो समस्याएं हैं पढ़ाई लिखाई संबंधित या किसी मित्र संबंधित वो हमसे कह पाएंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ में अगर हम टोका टाकी करेंगे ना तो वो कोई भी चीज़ हमसे कहेंगे नहीं, बल्कि अगर हम कोई काम क्यों नहीं करना इस बारे में अच्छे से समझाएंगे तो वो उन्हें समझ में भी आएगा कि क्यों हमें काम नहीं करना है। साथ ही हर बात में उन्हें आदेश नहीं देना है बल्कि उनकी मन की भी सुनना है, उनकी मन की भी जानना है, तभी वो अपनी बात खुलकर कह पाएंगे।
1: तो बच्चों के दोस्त बन के रहिए और उनको भी समझिए। और सिमी, घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि हमारे जाने का समय हो रहा है।
0: तो सखियों से लेते हैं अनुमति और कहते हैं
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रही हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं सरोज वर्मा। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं चौमासा गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सरोज वर्मा के गाय लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे चौमासा। अब आइए सुनते हैं मिर्जापुरी कजरी।

लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सरोज वर्मा के गाय लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुरी खजरी, और अब आइए सुनते हैं बनारसी ढुनमुनिया खजरी।

0: winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 6,70,000 cubic of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. And Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
3: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
4: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
3: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी।

0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
1: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को पैदा हो सकता है।
2: हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत, माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICEPHD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली

0: में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियापुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें

0: एक वर्षीय दो डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और आईआईसीटी बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 4 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
2: नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और आप सभी सुनने वालों का कुछ बातें कुछ गीत के इस बेहद खूबसूरत और जादुई सफर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त शिखा। दोस्तों, आज तारीख है 26 अगस्त। कैलेंडर का ये पन्ना बाकी दिनों से बहुत अलग और बेहद खास है, क्योंकि आज हम सब मिलकर मना रहे हैं महिला समानता दिवस यानी विमेंस इक्वालिटी डे। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ना ही ये सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने या बधाइयां देने का कोई जरिया है। ये दिन एक जश्न है हर उस अधिकार का जो महिलाओं ने सदियों के अंधेरे को चीर कर लड़कर हासिल किया है, और साथ ही ये एक संकल्प है उस बराबरी के अधिकार का जो आज भी पूरी तरह से मिलना बाकी है। कहते हैं कि महिलाओं को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एक खुले आसमान की जरूरत होती है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, पंख काटने से परिंदे रुका नहीं करते, हौसले बुलंद हो तो तूफान भी झुका नहीं करते। उन्हें मत सिखाओ कि सीमाएं कहाँ हैं, वो बेटियां हैं जो बंदिशों में भी रुका नहीं करती। तो चलिए, आज के इस बेहद खास शो कुछ बातें कुछ गीत का आगाज करते हैं एक ऐसे ही हौसले से भरे, जोश और उमंग से लबरेज बेहद खूबसूरत गाने के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के संग कुछ बातें कुछ गीत।

श्रोताओं, आज जब हम महिला समानता की बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखना होगा। आज ही के दिन साल 1920 में अमेरिका में महिलाओं को पहली बार वोट देने का संवैधानिक अधिकार मिला था। जरा सोचिए, जिसे हम आज एक बुनियादी अधिकार मानते हैं, उसे पाने के लिए महिलाओं को दशकों तक सड़कों पर उतरना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी और संघर्ष करना पड़ा। आज हम 2026 के भारत में जी रहे हैं। हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रही हैं, कारपोरेट की बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रही हैं और ओलंपिक के मैदान में तिरंगा लहरा रही हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे एक कड़वा सच आज भी छुपा हुआ है। समानता का मतलब सिर्फ बड़ी डिग्रियां या नौकरियां पा लेना नहीं है। समानता की असली शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। जब रसोई का काम सिर्फ माँ या बहन का नहीं रहता, जब बेटे और बेटी की परवरिश में फर्क करना बंद कर दिया जाता है और जब एक बेटी को भी उतनी ही आजादी मिलती है जितनी एक बेटे को। समानता तब आएगी जब हम महिलाओं को देवी मानकर पूजना बंद करेंगे और उन्हें एक इंसान मानकर उनके फैसलों का सम्मान करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जमाना बदल रहा है, तुम भी अपनी सोच को एक नई परवाज दो। बेटियों के खामोश जज्बातों को अब तुम भी अपनी आवाज दो। इसी खूबसूरत सोच को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर महिला को अपनी शर्तों पर जीने और

आज के जमाने में अगर हम ये कहें कि बेटियों को बेटा कहना बंद करना ही समानता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि बेटी होना अपने आप में बेहद गौरव की बात है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी, है ना? वहीं दूसरी तरफ समानता

रात तब पूरी होगी जब रात को अकेले सड़क पर निकलते वक्त किसी महिला या लड़की के मन में डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होगा। ये बात आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब तक हम अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित, भय मुक्त और सम्मानजनक माहौल नहीं दे सकते, तब तक हमारी तरक्की और हमारी समानता के सारे दावे खोखले हैं। महिला समानता का मतलब पुरुषों से आगे निकलना या उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी खौफ के अपनी राह खुद बनाना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी।

हमारा कार्यक्रम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन विचारों का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज हमें बस ये सोचना है कि हम अपने आसपास की महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, चाहे वो सुबह उठकर हमारे लिए चाय बनाने वाली माँ हो, राखी बांधने वाली बहन हो, हर सुख दुख में साथ निभाने वाली

राखी बांधने वाली बहन हो, हर सुख दुख में साथ निभाने वाली पत्नी हो, या फिर ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाली कोई महिला सहकर्मी हो। समानता कोई तोहफा या खैरात नहीं है जो हम किसी को दया करके दें, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। आज के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली मौके पर दुनिया की हर उस महिला के नाम चंद लाइनें नजर करना चाहती हूँ जो रोज अपनी किस्मत से लड़ती हैं और जीतती हैं। उठो, खुद अपनी उंगलियों से अपनी तकदीर लिखो। तुम किसी की परछाई नहीं, तुम खुद अपनी तस्वीर लिखो। तुम्हारे कदमों में जमीन है, तुम्हारे हौसलों में आसमान है। तुम आधुनिक युग की नारी हो, तुम ही से ये सारा जहान है।

वक्त का पहिया घूमता है और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन ये सफर, ये सोच और ये रेडियो का रिश्ता यहीं थमता नहीं। आज पूरा दिन हम महिलाओं के इसी अटूट जज्बे और अंतहीन शक्ति को सलाम करते रहेंगे। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि अपने घरों में खुशियां बांटिए, हर महिला के सपनों को पंख दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और याद रखिए, जब एक महिला एक कदम आगे बढ़ती है ना, तो पूरा सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश और ये पूरी इंसानियत एक कदम आगे बढ़ जाती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शिखा। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से अब दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच, ओटीटी वेव्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हिना का गीत।

अभी आप सुने थे फिल्म हिना का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार थे नक्शलाल पुरी और संगीतकार रविंद्र जैन। अब है सुने फिल्म गबन का एक गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

और अब कार्यक्रम के अंत में आई सुनी फिल्म अजूबा का गीत। आवाज सुदेश भोसले की है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम अजूबा।

करती है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज सुदेश भोसले की। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी की खुशबू, लोक परंपराओं की मिठास और विविधताओं में घुली एकता से होती है। कहीं पर्वतों की शीतलता है, कहीं समुद्र की लहरें, कहीं लोक गीतों की धुन, तो कहीं त्योहारों की रंगीन छटा।
1: कितना खूबसूरत है ना हमारा भारत दोस्तों। यहाँ मौसम बदलते हैं तो त्योहारों के रंग बदलते हैं, लेकिन दिलों में उत्सव की भावना बनी रहती है। हर प्रदेश अपनी संस्कृति की एक अलग कहानी कहता है और इन्हीं अनगिनत कहानियों से मिलकर बनती है भारत की सांस्कृतिक तस्वीर।
0: इसी रंग बिरंगे भारत की बात करते हुए आज हम पहुंचते हैं दक्षिण की ओर, केरल की हरी भरी धरती पर, जहां प्रकृति जैसे खुद उत्सव का श्रृंगार करती है। फूलों की पंखुड़ियों से सजे आंगन, पारंपरिक परिधानों की खूबसूरती, केले के पत्ते पर सजी स्वादिष्ट ओण सद्या और हर चेहरे पर त्योहारों की उमंग।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओणम की, केरल का वह लोकप्रिय पर्व जिसमें लोक कथा, प्रकृति, परंपरा और सामूहिक उल्लास एक साथ दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि अपनेपन, समृद्धि और मिल बांटकर खुशियाँ मनाने की सांस्कृतिक का उत्सव है।
0: हमारे प्यारे श्रोताओं, आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप सभी को हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और आज के सफर में आपके साथ हैं आपकी ये दो रेडियो साथी, मैं जयशालिनी।
1: और मैं आस्था।
0: तो आइए दोस्तों, भारत की इसी खूबसूरत विविधता को एक और रंग से परिचित होते हैं और जानते हैं ओणम के उत्सव, उसकी परंपरा और उसके पीछे छिपे सुंदर संदेश के बारे में।
1: तो चलिए केरल की फूलों से सजी गलियों की ओर चलते हैं, जहां हर एक रंग एक कहानी कहता है और हर मुस्कान में भारत की सांस्कृतिक एकता की झलक दिखाई देती है।
0: क्योंकि भारत की खूबसूरती यही तो है, रंग अनेक हैं पर उत्सव एक है, परंपराएं अनेक हैं पर भावना एक है, और दिलों में बसा भारत एक है।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह।

0: अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
0: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, अक्सर किसी खास अवसर के बहाने हम उन भावनाओं तक पहुंचते हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक ओर केरल की धरती पर मनाया जाने वाला ओणम तो दूसरी ओर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाने वाला ईद ए मिलाद उन नबी। दो पर्व, दो परंपराएं, लेकिन संदेश एक कि हमेशा साथ और मिलजुल कर रहें।
4: बिल्कुल जैशानी, और
0: यही तो भारत की खूबसूरती है आस्था, क्यों?
4: बिल्कुल, यहाँ त्यौहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते बल्कि हमारी साझा संस्कृति के रंग होते हैं। ओणम की बात करें तो यह केरल का प्रमुख पर्व है जो समृद्धि, खुशहाली, प्रकृति और सामाजिक एकता की भावना से जुड़ा है। फूलों की सुंदर पुक्कलम, पारंपरिक ओण श्रद्धा और घर आंगन में उमंग की लहर, हर तरफ उत्सव का माहौल रहता है।
0: और ओणम की सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है, जो मुझे भी लगती है, कि इसके पीछे राजा महाबली की लोक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि महाबली अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके शासन में सभी सुखी भी थे। इसीलिए ओणम हमें यह भी याद दिलाता है कि एक अच्छे समाज की पहचान सिर्फ उसकी समृद्धि से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की खुशहाली से होती है।
4: और यही बात हमें ईद मिलाद उन नबी से भी जोड़ती है। ये अवसर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने का है, विशेषकर प्रेम, करुणा, दया, सद्भाव और इंसानियत जैसी मूल भावनाओं को।
0: यानी एक तरफ महाबली की प्रजा के प्रति आत्मीयता की कथा और दूसरी तरफ इंसानियत, दया और भाईचारे की सीख। ये दोनों ही बातें हमें बता रही हैं कि त्योहार की असली रौनक दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है।
4: बिल्कुल, और शायद इसी को हम भारत की विविधता में एकता कहते हैं। हमारे पर्व अलग अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन खुशियां बांटने, प्रेम करने और एक दूसरे का सम्मान करने की भाषा सबकी एक है।
0: तो इस ओणम और ईद मिलाद उन नवी पर आइए हम सिर्फ शुभकामनाएं ही न दें बल्कि इन पर्व की सकारात्मक सीख को अपने व्यवहार का हिस्सा भी बनाएं,
4: क्योंकि ये त्यौहार तभी सार्थक है जब उनके दीपक हमारे घरों के साथ साथ हमारे मन को भी रोशन करें।
0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ
4: आप सभी को ओणम और ईद मिलाद उन नबी की
5: हार्दिक शुभकामनाएं।
0: खुशियां बांटिए, प्रेम बढ़ाइए और इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए दोस्तों। इसी के साथ, बारिश की बूंदें जब खिड़की पर दस्तक देती है ना, तो लगता है जैसे मौसम कोई पुराना गीत याद कर रहा हो।
4: बिल्कुल, और भीगी मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाओं की सरसराहट और चाय की प्याली, इन सब में कुछ तो ऐसा है जो दिल को बेवजह मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है।
0: और कभी यही बारिश हमें किसी खूबसूरत याद तक ले जाती है और कभी किसी अधूरे एहसास को फिर से जगा देती है।
4: तो आइए सुहाने मौसम की बूंदों को सुरों में बदलते हैं, तो सुनते हैं कुछ ऐसा जो बारिश के इस रोमांटिक मौसम को और भी खुशनुमा बना देगा।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
3: 05

0: चार दो दो दो सात छः पाँच आठ
1: शून्य पाँच चार दो दो दो सात छः पाँच आठ
2: लो अभी फोन लगाता हूँ
1: शून्य पाँच चार दो दो दो सात छः पाँच आठ
3: दोस्तों अक्सर जब हम कानून यानी लॉ के क्षेत्र में करियर की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले वकालत और अदालत की तस्वीर उभरती है। लेकिन बदलते समय के साथ कानून का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है। आज कॉरपोरेट लॉ, साइबर लॉ, बौद्धिक संपदा अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी सलाह, लीगल रिसर्च और कई नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए करियर के अवसर सामने आ रहे हैं।
4: बिल्कुल, यानी अगर आपकी रुचि तर्क वितर्क, न्याय, समाज और कानून की समझ में है तो आपके लिए इस क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कानून की पढ़ाई कैसे करें, कौन कौन से नए करियर विकल्प मौजूद हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन कौशलों की ज़रूरत होती है।
3: इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज मार्गदर्शन में हमारे साथ हैं एक विशेष मार्गदर्शक जो हमें कानून के क्षेत्र में करियर के नए विकल्पों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी।
4: तो आइए बिना देर किए सुनते हैं उनकी ये बातचीत और जानते हैं कि कानून के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर के कौन कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं।
3: तो साथियों प्रस्तुत है मार्गदर्शन कानून के क्षेत्र में करियर के नए विकल्प।
5: नमस्कार साथियों, मैं हूं तैयबा मारूफ और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा है और वो है कानून। कानून जो सिर्फ अदालत और मुकदमों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और न्याय की नींव भी है। कानून एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में अदालत, वकील और न्याय की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या कानून की दुनिया सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित है? इसी विषय को और करीब से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल जो कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में।
6: धन्यवाद मैम।
5: दोस्तों आज हम इनसे जानेंगे कि आज के समय में कानून की दुनिया किस तरह बदल रही है, युवाओं के लिए इसमें कौन कौन से नए अवसर हैं और एक आम नागरिक को कानून से जुड़ी किन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं और कानून की इस दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं मैम के साथ। तो सवालों की कड़ी में सबसे पहले मैम से मैं उनका परिचय जानना चाहूंगी कि पहले मैम अपना परिचय दे दें और फिर हम अपने सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाएं।
6: जी, मैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अर्थशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को लॉ के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आई हूं।
5: मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर लॉ के क्षेत्र में कोई स्टूडेंट है जो अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे प्रवेश लेने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया होती है और कैसे वो इस चीज में प्रवेश ले?
6: देखिए, यदि हम करियर की बात करें तो आज लॉ का जो क्षेत्र है वो बाकी सभी विषयों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे यदि लॉ की बात करें तो लॉ का संबंध केवल एक वकालत से या केवल एक कोर्ट कचहरी तक ही सीमित नहीं रह गया बल्कि वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत सारे नए क्षेत्र जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे साइबर लॉ की बात है, पेटेंट लॉ की बात है, इन्वायरमेंटल लॉ की बात है, स्पेस लॉ की बात है। तो यदि हम ये कहें तो यदि एक विद्यार्थी लॉ के रूप में अपना करियर चुनता है तो उसके लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अब यदि हम ये बात करें कि यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी छात्र छात्रा अपना लॉ में करियर बनाना चाहती है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक है 3 ईयर का कोर्स जिसको LLB कहते हैं और एक है इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें BLLB है, BSc LLB है, BCom LLB है। और आज का समय जो है काफी बदल रहा है और समय की मांग के साथ जो है इंटीग्रेटेड कोर्स का काफी चलन बढ़ा है। यदि LLB में बच्चा प्रवेश पाना चाहता है तो LLB और या इंटीग्रेटेड LLB में मैं अंतर बताना चाहती हूँ कि 3 साल के LLB के लिए बच्चे को पहले किसी भी विषय से ग्रेजुएट करना पड़ेगा, यानी 3 साल का ग्रेजुएट करने के बाद फिर 3 साल के LLB उसको करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यदि इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री लेना चाहता है ग्रेजुएशन की तो किसी भी स्टूडेंट को 10+2 के बाद सीधे वो एक बार में 5 साल का कोर्स करेगा, चाहे BCom LLB हो, चाहे BSc LLB हो, चाहे BLLB हो। दूसरा डिफरेंस दोनों कोर्स में ये है कि LLB के लिए दो बार बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम में आना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में एक बार में उसको इंटीग्रेटेड डिग्री 5 साल की मिल जाएगी। और तीसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है LLB और इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स में कि LLB में जहां बच्चा केवल कानून के विषयों तक ही सीमित रहता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कंपनी लॉ है, साइबर लॉ है, लेकिन जो बच्चा इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा वो लॉ के

0: विषय के साथ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ये सब भी अध्ययन कर सकता है।
1: तो मैम, जैसा आपने कहा, तो इस पर मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि लॉ के क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए जो हमारे स्टूडेंट है, जिनको तैयारी करनी है आगे, उनके लिए वो कौन सी परीक्षाएं होती है जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं?
0: जी, जैसे लॉ के क्षेत्र में यदि जो भी अपना करियर बनाना चाहता है, वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन यदि सबसे फेमस परीक्षा की बात करें तो सीयूईटी एक है, जिसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस भी एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का। और दूसरा बहुत बड़ा जो नेशनल लेवल का एक एग्जाम है, जिसको कहते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जो अपने स्पेशल ऑर्गेनाइज करते हैं लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे एलसेट है, उसी तरह से स्लैट है, जो कि सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। या यदि हम बात करें क्लैट में, 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है क्लैट के थ्रू अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन लेती है, लेकिन जो दिल्ली का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके लिए आईलेट एग्जाम होता है। अब मैं यहाँ पे, चूंकि ये कार्यक्रम युवाणी है और मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि यदि वो क्लैट के थ्रू तैयारी करने जा रहा है तो उसका क्या रास्ता हो सकता है। क्लैट, जिसको कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये कंसोर्डियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, और ये जो है इसके थ्रू 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज प्लस प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन बच्चों का लेते हैं। इसके बेसिकली, इसमें यदि कोई बच्चा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में आ रहा है तो प्लस टू में उसका 45% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और यदि वो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका मिनिमम 40% होना चाहिए। अब यदि हम ये बात करें कि कोई बच्चा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आखिर इस पेपर का पैटर्न क्या है। इस परीक्षा में 120 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं, और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है, और यदि कोई बच्चा गलत कर देता है तो 0.25 उसका नंबर डिडक्ट हो जाता है। अब यदि हम ये बात करें कि क्लैट परीक्षा में किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रायः इसमें 5 सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश में से करीब 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से लीगल रीजनिंग की बात करें तो 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद यदि हम बात करें करंट अफेयर्स और जीके की तो 20%, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10% इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न 5 विभिन्न क्षेत्रों की तैयारी करके बच्चा जो है क्लैट परीक्षा पास करके 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस में जो है क्लैट के थ्रू एडमिशन ले सकता है।
1: अच्छा, तो मैम, तो ये आपने बता दिया कि जो एडमिशन का प्रोसेस होगा कि बच्चा कैसे एडमिशन लेगा, फिर कैसे अपनी पढ़ाई करेगा, हालांकि वो फिर उसके डेडिकेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेकर। अच्छा मैम, ये बताइए कि इसके बाद हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए किस तरह से वो किसी जॉब किसी फील्ड में वो जा सकता है?
0: देखिए, जहां तक बात है कि एक शिक्षक यही बताता है बच्चों को कि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, बच्चे की खुद की प्रतिभा उसको आगे बढ़ाती है। हालांकि वैश्वीकरण के इस दौर में जो है लॉ का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। यदि हम सरकारी क्षेत्र की बात करें तो कोर्ट में वकालत कर सकता है, उसके लिए ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास करना पड़ेगा किसी भी छात्र छात्रा को। उसके बाद यदि जज बनना चाहता है तो अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि पहले जुडिशियल सर्विसेज के लिए पीसीएसजी एग्जाम के लिए 3 ईयर की प्रैक्टिस जरूरी थी, उसको कम करके अब सिविल जज के लिए 1 साल की प्रैक्टिस सरकार ने कर दिया। तो अब ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को एक क्षेत्र में जाने के लिए, सरकारी अफसर बनने के लिए काफी सुविधाजनक रास्ता होगा। उसके अलावा आज के समय में प्राइवेट कंपनीज में या कॉरपोरेट्स में भी लीगल एडवाइजर की बहुत बड़ी डिमांड है, साथ ही में सरकारी क्षेत्र में न केवल कोर्ट कचहरी, न केवल जज के रूप में, बल्कि बैंक, सरकारी बैंकों में आरबीआई हो गया, उसी तरीके से सेबी, इन संस्थाओं में भी लीगल एडवाइजर, साथ ही में जो सरकार की नवरत्न और महारत्न कंपनी है, उन कंपनियों में भी लीगल एडवाइजर की मांग जो है डे बाई डे बढ़ रही है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि और क्या विद्यार्थियों के लिए अवसर हो सकते हैं, तो यदि विधि में एलएलएम करके या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद कोई भी विद्यार्थी जो है नेट परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी विद्यालय में टीचिंग के रूप में भी कार्यरत हो सकता है। और मीडिया की बात करें तो आज का मीडिया का दौर है, और मीडिया में लीगल कंटेंट या कानूनी संबंधित मामलों के एनालिसिस के लिए भी लॉ के क्षेत्र की बड़ी डिमांड है। साथ ही में चूंकि डिजिटलाइजेशन का युग है तो एक नया एरिया हमारे सामने उभर के आया है, साइबर क्राइम का, और डे बाय डे जो साइबर क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो साइबर जो लॉ के टीचर की डिमांड बहुत ज्यादा है कि साइबर या साइबर लॉ के एरिया में लीगल एडवाइजर की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही में पेटेंट लॉ है, उसके अलावा जो है इंटरनेट के युग में इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट क्रिएटर के रूप में लॉ के जानकार की आवश्यकता बढ़ी। यानी कहने का ये मतलब है यदि हम अन्य विषयों की तुलना में लॉ के सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो अन्य विषयों में कहीं 5-6 रास्ते ही खुलते

0: लेकिन लॉ एक ऐसा विषय है जो किसी भी क्षेत्र से अछूता नहीं है, क्योंकि कानून का काम ही होता है समाज और राष्ट्र को नियंत्रित करना। तो बिना कानून के जाने तो हम कोई भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते।
1: बिल्कुल मैम, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा मैम, एक ये सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके अंदर प्रतिभा है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कैसे करें, तो उसके लिए क्या?
0: देखिए, जहां तक यदि आर्थिक कमजोरी की बात है तो ये तो हमारे देश की सरकार का दायित्व है, क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि बच्चा प्रतिभावान है और वो पढ़ना चाहता है तो उसे स्कॉलरशिप्स प्रदान की जाए, मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए। दूसरा ये रास्ता है इंटीग्रेटेड कोर्स की यदि बात करें तो इनकी फीस LLB की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो इंटीग्रेटेड में भी सेपरेशन है, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है बच्चा उस चीज का चयन करे। और यदि वो इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर पाता है तो उसका यही रास्ता है कि पहले वो 3 ईयर किसी भी विषय से ग्रेजुएट डिग्री करे और उसके बाद फिर वो 3 साल का LLB करे, क्योंकि LLB की फीस और इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस में बहुत ज्यादा अंतर है। और लेकिन यदि हम राष्ट्र की बात करें तो ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि सरकार कहते हैं एजुकेशन टू ऑल की बात करते हैं, तो ये जरूरी है कि जो बच्चा प्रतिभावान है और लॉ के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो निश्चित ही सरकार की कोई ऐसी नीति होनी चाहिए कि इन बच्चों को भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए।
1: जी मैम। और मैम, हमारा अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो क्या उसके लिए जरूरी है कि वो लॉ का स्टूडेंट है और वो अच्छा एक लॉयर बन सकता है, या कुछ और क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई पढ़ाई करता है तो हर कोई अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच नहीं सकता।
0: yes, yes.
1: तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लॉयर बन सके?
0: देखिए, लॉयर के लिए कहते हैं ना क्वालिटी मैटर्स क्वांटिटी डजंट मैटर। तो यदि वाकई में अच्छा एक लॉयर बनना है तो उसकी सबसे पहली चीज है कि उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये कम्युनिकेशन पावर एक दिन में विकसित नहीं होती है, ये है कि बच्चे को शुरुआती दिन से अपनी शिक्षा में अच्छे से बोलना आना चाहिए, साथ ही में कैसे कंटेंट को ब्रीफली तैयार किया जाए
1: जी।
0: और तीसरा, केस को कैसे डिफीट किया जाए या केस को कैसे सामने प्रेजेंट किया जाए, यानी कम्युनिकेशन, राइटिंग, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, ये सभी चीजें एक व्यक्ति के अंदर यदि एक छात्र के अंदर होगी तभी वो एक अच्छा वकील हो सकता है, क्वालिटेटिव वकील बन सकता है।
1: यानी कि उसके अंदर जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो ज्यादा जरूरी है,
0: क्योंकि समय इतना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, केवल किताबी ज्ञान के आधार पे हम किसी भी एरिया में अपना करियर नहीं बना सकते। उसके लिए जरूरी है कि समय समय पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजों के साथ अपने को अपग्रेड किया जाए।
1: जी। और मैम, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या जो हम देख रहे हैं कि अभी का जो दौर है वो पूरा AI बेस्ड हो गया है, कि सब कुछ AI सब इसी की चर्चा चल रही है, तो क्या आने वाले समय में AI एक वकील का कॉम्पिटिटर हो सकता है या फिर एक पावरफुल असिस्टेंट की तरह ये प्रस्तुत रहेगा?
0: देखिए, मेरे हिसाब से तो AI कभी भी रिप्लेस नहीं, क्योंकि मैन पावर को कोई रिप्लेस नहीं कर सका है ना, वो एक मशीन है, वो एक कृत्रिम चीज है। देखिए, हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि साइंस भी आया तो यही प्रश्न उठा कि क्या वो नौकरी छीनेगा, क्या वो लोगों को जो है मैन पावर को रिप्लेस कर पाएगा, तो मानव बुद्धि का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। AI का दौर जरूर है, AI ने हमारे हर कार्य को इजी जरूर बनाए हैं, लेकिन AI को हम एक असिस्टेंट के रूप में यूज करें तो ही ठीक है, क्योंकि यदि हमने किसी AI को अपना मास्टर बना दिया तो हमारी स्किल भी पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, और दूसरा फिर हमको आगे करियर बनाने में भी बहुत काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो AI या कोई भी अनदर मशीन को हम एक असिस्टेंट के रूप में ही इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है मेरे हिसाब से।
1: जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगला सवाल ये कहना चाहेंगे आपसे मैम कि क्या आने वाले समय में जो AI जनरेटेड कंटेंट है, जैसे डीप फेक या डिजिटल आइडेंटिटी के मामले जो होते हैं, तो इसमें क्या एक नए प्रकार के एक नए तरह के वकील की जरूरत पड़ेगी कि इन मामलों को वो अलग से सुलझाएं?
0: नहीं, अलग प्रकार की नहीं। ये देखिए, मैंने क्या कहा कि यदि कोई एक वकील वकालत करता है तो उसके सामने बहुत तरीके के केसेस आते हैं और बहुत सारे डायमेंशन के केसेस आते हैं, है ना। लेकिन तकनीकी के इस युग में सच्चाई और गलत के बीच में भेद करना बड़ा कठिन हो गया है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि साइबर क्राइम की बात कहा, तो साइबर क्राइम में क्रिमिनल्स कर क्या रहे, म्यूल अकाउंट खोल के लोगों के पैसे ट्रांसफर कर ले रहे हैं, तो उसके लिए यदि कोई वकील इस केस को, साइबर क्राइम से रिलेटेड केस को फेस कर रहा है, तो ये जरूरी है कि उसके अंदर भी इतनी स्किल हो कि वो उस एरिया को अच्छे से समझ पाए
1: जी।
0: तो उसके लिए IT सेक्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी वो ट्रांसफर के केस या किस तरीके से फ्रॉड हुआ, क्या आखिर मटेरियल उन्होंने फ्रॉड का यूज किया, इसके बारे में वो समझ पाएंगे।
1: तो यानी मैम कि साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है तो साइबर लॉ के करियर में संभावनाएं भी क्या उतनी ही तेजी से बढ़ रही
0: है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है कि जहां पर कमी है वहीं पर जॉब है, जहां कमी है वहीं जॉब है। तो भाई, जहां पर अपराध शुरू हुआ उसी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो जब साइबर क्राइम शुरू हुआ तो अब उस क्षेत्र की तरफ

0: रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है कि आखिर उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, और नियंत्रित तो आखिर का लॉ का ही व्यक्ति कर पाएगा उस क्षेत्र को।
1: हालांकि मैम जो भी जानकारी आपने दी, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे श्रोता, हमारे जो भी वो दोस्त जो कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे होंगे, वो जरूर इसको समझ पाएंगे और कुछ बेहतर ही इससे सीख पाएंगे वो। और चूंकि अब वक्त हो चला है कि हम अपनी बातचीत को यहाँ खत्म करें, लेकिन जाने से पहले मैम आपसे एक और ये गुजारिश रहेगी कि आप हमारे युवाओं के लिए कुछ मोटिवेशनल

0: किताबी ज्ञान के आधार पर अपने करियर को बना सकते हैं। जरूरी है कि जो नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जरूरी है क्योंकि आजकल सारी जर्नल, सारी किताबें, न्यूज़पेपर सब ऑनलाइन हो गए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ई कंटेंट के साथ भी अपना सामंजस्य बनाएं। लेकिन ये कदापि ना करें कि केवल हम गूगल पे जाके सारी चीजें सर्च करके पढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ पढ़ें, किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, साथ ही में कानून के क्षेत्र में जो नए बदलाव आ रहे हैं, जो नए नए चीजें आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है। तो मैं श्रोताओं को यही कहूंगी कि यदि वाकई में एक अच्छे आप कानून के क्षेत्र में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो जरूरी है किताबी ज्ञान के साथ साथ आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें।
1: बहुत अच्छा संदेश दिया मैम आपने। उम्मीद करते हैं कि हम और हमारे साथ जो भी श्रोता आज इस कार्यक्रम को सुनेंगे वो जरूर इस पर अमल करेंगे। इसी के साथ मैम आप हमारे स्टूडियो में आई, अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो आपने सुना डॉक्टर अंजलि अग्रवाल को, जिन्होंने कानून के क्षेत्र में करियर के नए विकल्पों और संभावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि इस बातचीत ने कानून को केवल अदालत और वकालत तक सीमित समझने की धारणा को थोड़ा और व्यापक किया होगा।
3: बिल्कुल आस्था, आज कानून का क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। जरूरत है तो बस अपनी रुचि पहचानने, सही दिशा चुनने और लगातार सीखते रहने की।

0: अच्छा जयशालनी, तुमने वो वाले गाने की लाइन सुनी है?
1: कौन सी लाइन की बात कर रही हो तुम?
0: वो जलवा चुराने को जी चाहता है।
1: हाँ बिल्कुल सुनी है ना, इसे भला किसने नहीं सुना। लेकिन तुम मुझे अभी ये क्यों बता रही हो?
0: तो मैं तुम्हें इसलिए ये बता रही थी कि हम लोग भी भरी महफिलों में से जलवे चुरा सकते हैं अपनी अट्रैक्टिव बातों के थ्रू।
1: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। और दोस्तों, अपनी बातों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी।
0: और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के ये दो नए शब्द यूथ डायरी में। और आज का हिंदी का शब्द है अधिसूचना, जिसका अर्थ है किसी महत्वपूर्ण बात की आधिकारिक जानकारी देना या बताना।
1: और इसे हम वाक्य में कुछ यूं कह सकते हैं कि विद्यालय ने छुट्टी के संबंध में अधिसूचना जारी की है। और आज का अंग्रेजी वर्ड है एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एंड इट्स मीनिंग इज नॉट क्लियर और हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग।
0: और हिंदी में इसका मतलब होता है कि जिसका अर्थ साफ ना हो या जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकें।
1: एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज हिज आंसर वॉज एम्बिगुअस।
0: और दोस्तों, जिंदगी तेजी से आगे बढ़ती है, इसलिए जितना हो सके हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस विचार को ख्याल में रखते हुए आइए जानते हैं आज का इतिहास। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का सन 1910 में आज ही के दिन यूगोस्लाविया में जन्म हुआ था।
1: इसी के साथ दोस्तों, मेनका गांधी, जो कि एक प्रसिद्ध राजनेत्री, संजय गांधी जी की पत्नी और पशु अधिकारवादी हैं, इनका जन्म 26 अगस्त 1956 को हुआ था।
0: और भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का जन्म 1972 में हुआ था।
1: जर्मनी के म्यूनिख शहर में 20वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत 26 अगस्त 1977 को हुई थी। आशा, चलो अब जल्दी से ये बताओ,
0: क्या चीज़?
1: दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरे बगैर।
0: अरे ये तो बहुत आसान है भाई, इसका आंसर है चांद।
1: बहुत सही आस्था, एक ही बार में तुमने इसका सही जवाब बता दिया।
0: तो तुम्हें क्या लगा था QOTD के साथ इस पे भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ? और अगर मेरे से ये सवाल जवाब पूछना हो गया हो तुम्हारा, तो दोस्तों से भी पूछ लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया था?
0: और इसी के साथ आपको कल का भी पूछा गया सवाल बता देते हैं, जो कि है काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, जिसका आंसर है 1925।
1: और अब विनर्स के नाम भी बता दो।
0: बिल्कुल। और वो हैं चंदा चंदौली, प्रवीण चौहान, खरगोन मध्य प्रदेश, ब्रिजेश ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू, कुसुमबाई और दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, नंदिनी, निकेश, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। इसी के साथ दोस्तों, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, इसी के साथ अब आज की रोजगार सूचना भी बता देते हैं, जो कि आई है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1156 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अब जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आज है एक ऐसी महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस, जिनका नाम है मदर टेरेसा।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से प्रदेशव्यापी लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति निःशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ कर। यह योजना के जरिए से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रसन्न ने अब 60 साल

0: बेसी उम्र का प्रदेश का महिला लोग निःशुल्क यात्रा कर सकेले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले
1: 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरे। इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में प्रारंभ की जा रही है, ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है।
0: मुख्यमंत्री कहने की ये सुविधा सुरक्षा से सम्मान, सम्मान से स्वावलंबन और स्वावलंबन से ओ नेतृत्व का जत्रा है, जहाँ हर बेटी, बहन, माता आत्मनिर्भर महसूस करें। ये मौका पर वहाँ की घोषणा करी कि स्नातक में पढ़े वाली 50,000 बेटियों के राज्य सरकार की ओर से अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दिया जाए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, लखनऊ के महापौर सुषमा खरकमाल और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल के साथ ही कई गो जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। महिला लोगों मध्य निःशुल्क बस यात्रा योजना के शुभारंभ के मौका पर प्रदेश के सज्जू जिला में कार्यक्रम आयोजित की गई। प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के मौका पर महिला लोगों बदे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बसन और सिटी बसन में निःशुल्क यात्रा का घोषणा कर लिया हवे। इस घोषणा के मुताबिक सब्जो उम्र का महिला लोग लेहनी भी नहीं 6 बजे से 29 अगस्त के आधी रात में बसन में निःशुल्क यात्रा कर सकेले। उनके साथ ही एगो सहयोगियों बदे निःशुल्क यात्रा का अनुमति दी हल गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में आज लखनऊ में विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित यूपी एग्रीज परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कर गए। समझौता ज्ञापन यूपी डास्प के साथ ही गूगल और नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी आईटीसी और एक्वा ब्रिज के बीच भई। ये मौका पर ज्ञापन के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का 21 और बुंदेलखंड का 7 को जिला में किसानों के आय में बढ़ोतरी वाले खास कार्यक्रम चलावल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से खेलो इंडिया संवाद के संबोधित करी है। ई खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण के एगो साझा मंच दी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के तहत मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम में हर जिला के बी वो कॉलेजों के जोड़ल गई है। ये कॉलेजों में मौजूद विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ ही वर्चुअल जरिया से संवाद से जुड़े हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसर से विद्यार्थी खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा ली है। गृहमंत्री अमित शाह अगला 1 वर्ष में तीन वो नया आपराधिक कानून देश भर में पूर्ण तरीका से लागू करने का लक्ष्य रख लिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य पावे बदे मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी बा।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इस्लाम धर्म का पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। ये मौका पर पूरा प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन हो रहा है। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के सज्जो जिला में आज ईद मिलाद उन नबी के लेके मुसलमान लोगों ने खास उछाल। कई जिलों में जुलूस ए मोहम्मदी के लेके कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ ही यातायात व्यवस्था में ढेरी बदलाव कर गई बा। नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई भयंकर बाढ़ के बेखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमा से सटल महाराजगंज और कुशीनगर जिला में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिला में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के अनिशा के देखत राज्य आपदा मोचन बल का टीम तैनात कर दी गई है। उधर मौसम विभाग प्रदेश के कई दूर पूर्वी और पश्चिमी जिला में भारी वर्षा का चेतावनी दिया। समाचार पूरा भई, नमस्कार।

ये आकाशवाणी वाराणसी है। मीडियम 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 सुनेगा मेघना कुमार का गायन। रात्रि 10 बजे सुनेगा बट वृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अन्नू जायसवाल की बातचीत। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनेगा समृद्धि गुप्ता के गाए भजन। शाम 7 बजे सुनेगा अंग्रेजी कार्यक्रम में टॉक द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। टॉकर होंगी डॉक्टर कविता आर्या। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर पत्ता गोभी की खेती विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत आप सुनिएगा। साथ ही साथ किसान में सुनेंगे सरोज वर्मा की गाई कजरी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अभी यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल दिनांक 27 अगस्त 2026 दिन गुरुवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4:00 सुनेगा संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनेगा लखनऊ केंद्र से कल सुबह 9:30 पर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर सुनेगा डॉक्टर राजेश कुमार शाह का सितार वादन। कल दिन 12:45 पर सुनेगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां व साथी का शहनाई वादन। और कल रात्रि 10:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर संदीप कुमार से जागरूक बने रक्तदान करें विषय पर जानकारी। श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस सुनेगा कल सुबह 7:00। मधुरमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगे सुभाष चंद्र यादव और साथी। इनके गाय लोकगीत आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में। कल शाम 6:30 पर साथ ही साथ किसान वाणी कार्यक्रम में सुनेगा गन्ने की फसल में आवश्यक कृषि कार्य विषय पर महेंद्र कुमार सिंह से बातचीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर और कल रात्रि 8:00 कलाकार होंगी प्रियंका सहवाल। अंगनेय कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर बने सुनेंगे अन्य कार्यक्रम के साथ साथ किशोरियों और महिलाओं में अवसाद की समस्या और समाधान विषय पर सजीव फोन इन हेलो अंगनेय कार्यक्रम। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। धरती गीत कार्यक्रम में कल शाम 5:00 सुनेगा सिंधी गीत, कलाकार होंगी कमला केशरवानी। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुने फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे

0: कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चांदनी का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरि। तो आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चांदनी का ये गीत।

अब ऐसा नहीं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा एक और गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम अर्पण।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन 84,300 पर्यटकाः विलीनाः, यत्र 100+ भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी

0: पंचो राम राम।
1: राम। दीना भैया।
0: हाँ समारू भैया।
1: अरे किसानी के क्या हाल चाल हो बतावा।
0: ए भैया देखा, जब किसानी के बात कहला ना तो इसमें देखा ना, धाने के खेते में जौन घास लगल है ना, सब मनई बिन बिन निकालत हुआ ना, ऊपर से दही जौन है ना, हरा हरा फुहारा भी एकदम फेंकत हुआ हो।
1: अब देखा करेजा ठंडा हो जाता है।
0: हाँ
1: यही से कहा जाला कि भगवान जो हो है किसानन पर हमेशा दया करे ना। कभी देर सवेर हो जाला अलग बात है, आज ही पानी हमन के खाद के काम करे
0: हाँ
1: है कि
0: कहे नहीं
1: नहीं।
0: एकदम।
1: अर्थात यही बात कहा जाला कि भाई खेती किसानी दुरुस्त रहे, जीव जानवर दुरुस्त रहे। अदीना भी एक बात हम बताई भो,
0: हाँ
1: देखा हमन किसान मन नहीं जा, कभी कभी पैसा ना ही बाहे,
0: हाँ
1: तरह तरह खर्चा भी किसानी में है, हिताई निताई और शादी ब्याह बीमारी लेकिन पढ़ाई लिखाई। अभी देखा रोपनी में कितना पैसा लग गल है। तो जब घर में कोनो मनई बीमार हो, बुजुर्ग हुआ है, तो जब पैसा की जरूरत पड़े तो हमन सरकार कितना सहायता करेला।
0: तो काहे इतना चिंता करत हुआ ये समारू भैया?
1: चिंता ना कि
0: ये देख,
1: सरकार सहायता के
0: अरे
1: इतना
0: देखा
1: बढ़िया
0: ये
1: मन
0: सहायता करत सरकार, देखा ये एक योजना है आयुष्मान भारत योजना,
1: कितना बढ़िया योजना।
0: इतना बढ़िया योजना है भैया, ये गरीबन बदे ना राम बाण का उपाय है।
1: तो यही बात देखा तब ये योजना का जो बतौला आयुष्मान भारत योजना, एकर पंच लोग के लाभ उठाओ के चाहिए। अब विशेष जानकारी बदे संबंधित विभाग में जाए के वहाँ के अधिकारी से मिल करके बात पूछ लें कि भैया ये योजना का लाभ कैसे मिली, एकर उम्र कितना हुई, कितना रुपया। ऐसे तो भाई सुनने में आ रहा कि 5 लाख रुपया तक का कैशलेस इलाज हुई
0: हर एक साल
1: हर एक साल।
0: साल में एक बार जो है किसान भाई लोग 5 लाख तक का इलाज, मुफ्त इलाज, कैशलेस इलाज करवा सकल में।
1: लेकिन कौन जो उम्र का।
0: एक उम्र जो है न समारोह भैया
1: हाँ हाँ
0: 70 साल से अधिक, जो बुजुर्ग हो
1: अच्छा।
0: चाहे कोई महिला बुजुर्ग हो,
1: हाँ
0: वो अपन एकर लाभ उठा सकलन।
1: हाँ तो भैया आयुष्मान भारत योजना के लाभ उठाओ बदे संबंधित विभाग में जाए करके पूछें कि क्या क्या उम्र दस्तावेज लगी। हाँ इससे आधार कार्ड जरूर लगी है,
0: हाँ
1: मोबाइल
0: एकदम कॉमन
1: नंबर
0: चीज।
1: जुड़ल रहे आधार
0: हाँ
1: कार्ड
0: हाँ
1: से, और जो राशन कार्ड वगैरह है सब लगा करके पूछ ले जा करके, और कैसे बनी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड कैसे बनी
0: यह नहीं समारोह भैया,
1: भैया।
0: ये सब जवन दस्तावेज है ना, ये सब दस्तावेज एक लगे जुटा के, अब बगल में देखा कहीं जहाँ साइबर हो या फिर एक रखे वेबसाइट आवला आयुष्मान भारत के नाम से, जेकर भाई मोबाइल बा, आजकल तो सब लड़कन के हाथ में बढ़िया बढ़िया मोबाइल बा बड़ी बड़ी, ओमे भाई गूगल पे सर्च करके देख ला आयुष्मान भारत पे, ओपे जाके कर आप आवेदन कर सकलन। ए समारोह भैया,
1: भैया
0: ये आयुष्मान भारत के जो योजना है ना, गरीबन की बदी बहुत ही अच्छा तरीके से काम करत है।
1: हाँ तो करते भैया, तो लाभ उठाई हमन के धर्म भी है। आए अचल करके समझ लग जाए, कार्ड बन जाए और कर लाभ लोग उठावे पंच लोग। ये तो अपन भारत आयुष्मान भारत योजना की बात रहा। अब देखा कभी कल यो होला हो हम के खेती किसानी में, ये देखा जाए कि नगदी फसल कौन है। तो नगदी फसल है सब्जी के बात वाला, सब्जी नगदी फसल है, सब्जी तैयार है तोड़ला गैल बाजार में बिके तत्काल पैसा आएगा है, मानते के ना।
0: हाँ कहे नहीं
1: और जब सब्जी की बात चला रहा तो पत्ता गोभी
0: हम
1: लाजवाब
0: देखा है,
1: सब्जी
0: एकदम लाजवाब सब्जी है भैया।
1: देख कहला गल हो कि तरकारी की मिल जाए, दाल भात तरकारी
0: हाँ
1: कितना अच्छा लगेला।
0: कितना बढ़िया लगला।
1: तो आज पंचायती में बातचीत सुनवा दल जाए पंच लोग के मन की पत्ता गोभी का खेती किसे होला।
0: हाँ
1: डॉक्टर राजेश कुमार से सतीश कुमार यादव भैया बतियोल हो, सब लोग पंचे सुने।
0: एकदम सुनवाए दे भैया।
2: आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं डॉक्टर राजेश कुमार, आप निदेशक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सहनशाहपुर वाराणसी में। आज हमने लोग आपसे जानल जाए कि पत्ता गोभी का लोग खेती कैसे करें। तो सबसे पहले निदेशक साहब, आपका हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
2: तो हमारे किसान भैया उनके ये बताएं कि भाई आज के समय में बाजार में पत्ता गोभी का बहुत मांग है और लोग एक खेती के कई चाहत हुआ, वो चाहे अपने कह लो कि बाजार के लिए या अपने खान पान के लिए। डॉक्टर लोगों का भी सुझाव है कि एमे बहुत सारा पौष्टिकता है,
3: जी
2: तो एक खेती लोग अगर करल चाहते हो तो कैसे करें।
3: जी बहुत अच्छे सवाल हैं। आजकल हम पत्ता गोभी की खेती पे अब नया जोर दे रहे हैं
2: जी
3: और किसान भाई भी इससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो पहले बता दूंगा, जो बताया गया कि पत्ता गोभी से बहुत से ऐसे तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बड़े

0: मतलब जरूरी फायदेमंद होते हैं। तो गोभी वर्गीय फसलों में अगर देखा जाए तो पत्ता गोभी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो समस्त सब्जी उत्पादन में क्षेत्रफल में लगभग ये काफी इसका रोल होता है।
1: जी
0: देखा जाए तो भारतवर्ष में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और लगभग 106 लाख क्विंटल से ज्यादा इसका उत्पादन होता है।
1: अच्छा
0: तो जो औसत उत्पादन है हमारे देश के पत्ता गोभी का लगभग 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास ये उपज मिल जाती है। हालांकि किस्में इसमें और हैं जो ज्यादा उत्पादन देती हैं। इसका प्रयोग हम लोग जैसे सब्जी, फास्ट फूड, सलाद, अचार, पकौड़े कई तरह से कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये इसमें ग्लूकोसिनोलोड भी पाया जाता है जो एंटी कैंसरस बोलते हैं। तो इसलिए पत्ता गोभी का जो खपत है, जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको भी अगर सलाद में या बंद उसमें जो बर्गर में या हर तरह से दिया जाए तो वो भी आजकल पत्ता गोभी की खपत बढ़ी हुई है और सब लोग इसके चाव से खाते हैं इसको।
1: जी, तो निदेशक साहब, तेरी हमारे भैया उनके ही बताएं कि अगर वो लोग खेती करे जात हैं
0: जी
1: तो किस वक्त का चुनाव करें और खेत में का वो लोग देखभाल करें, या कह लो कि खेत की तैयारी कैसे करें।
0: जी तो खेत की तैयारी जो मिट्टी हो एक चाहिए,
1: जी
0: जैसे कि उसमें अच्छे जीवांश हो जिसमें कि कार्बन का मात्रा ज्यादा हो। आजकल के हमारे कार्बन की मात्रा जो मिट्टी में कम होती जा रही है, तो उसको बढ़ाने के कई तरीके हैं कि वो ढांचा डालें, गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें। ये अच्छा रहता है कि ताकि हमारा जो तत्व है मिट्टी का वो पौधा ले सके और वो अल्टीमेटली हमको मिले, मतलब जो खाए उसको मिले। तो इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसके लिए बहुत अच्छी पाई जाती है और इसकी अच्छी उपज के लिए खेत को मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए और इसके लिए 3-4 जुताई करके इसका पाटा लगा दें। अब इसकी खेती रोपाई करके करते हैं
1: अच्छा
0: तो इसके पहले हमको नर्सरी तैयार करनी
1: जी
0: पड़ेगी। तो नर्सरी के लिए जो है हमको अगर 1 हेक्टेयर खेत लगाना है तो 3 × 1 मीटर की क्यारी जो 20 से 25 मीटर सतह से उठी हुई हो, फावड़ा से मिट्टी से बना लेते हैं, और ऐसी क्यारियां लगभग 20 क्यारियां चाहिए होती हैं 1 हेक्टेयर की पत्ता गोभी को लगाने के लिए। नर्सरी आपने बना लिया लेकिन नर्सरी का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम उसको सौरीकरण कर लें, बोने के 15-20 दिन पहले उसको सफेद प्लास्टिक से ढक देते हैं, मिट्टी को नम करके इस तरह से ढके कि मिट्टी का जो बाहर से और अंदर से हवा का आदान प्रदान न हो। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर का तापमान थोड़ा सा बढ़ता है और जिसमें कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद उसको हटाने के बाद जब हमको लगाना हो तो हम मिट्टी में कुछ गोबर की खाद, कुछ हमको जैसे आजकल बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ट्राइकोडर्मा है, ये सबको मिला के तो मिट्टी में जो कुछ आशंका है कि कोई पैथोजन या कोई ऐसा कारक होगा जो कि पौधों को नुकसान पहुंचा सके वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मिट्टी में हम एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना लेते हैं और उसमें बीज, एक एक बीज आधा सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं। एक जगह 2 बीज होने से हो सकता है दोनों बीज खराब हो जाएं, तो एक एक बीज को डालने से होता है क्या है कि उनको स्वस्थ एकदम उनका वृद्धि विकास अच्छा होता है जो पौधे होते हैं, तो दूरी बराबर मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए पौधे हमारी नर्सरी में अच्छे बनेंगे। हमारे किस्मों की बात आपने कही तो इसमें जैसे कि किस्में हैं, हमारे जो संस्थान है आईसीआर का कटरायन में, कटरायन ठंडी जगह है और जो पत्ता गोभी का जो बीज बनता है वो केवल ठंडे जगह पे ही बन सकता है। ये जैसे उसके लिए बीज बनाने के लिए हमको 2 फसल लेना पड़ता है कि एक हमने पत्ता गोभी लगा दिया और उसको हमने छोड़ दिया, तो अगले सीजन में जब ठंडक आएगी तो उसको ठंडक की रिक्वायरमेंट होती है, तब उसमें फूल निकलना शुरू होता है। जब फूल निकलने के लिए लगभग उसको लगभग 1 से लेके 3 सप्ताह तक 4 से 10 डिग्री का तापमान पर छोड़े रहते हैं। उसके बाद जब तापमान थोड़ा बढ़ता है, लगभग 12 से 15 से 18 डिग्री तक चलता है, तो उसमें फूल निकलना शुरू होता है जो बीज भी बाद में बीज बनकर निकलता है। तो वहां से ज्यादा किस्में निकाली गई हैं हमारे आईसीआर सिस्टम में और जो भी लोग प्रोडक्शन करते

0: बीज का वो ठंडे प्रदेशों में या ठंडे देशों से ही बीज इसका प्रोड्यूस करके सब जगह जाता है।
1: तो जिसम कि आप कहते हैं कि एक बीज प्रोडक्शन हो सकेला कि ठंडा ही प्रदेश में हो, तो अगर वो लोग का किसान भाई अगर एकर पौधा रोपण या एकर पत्ता गोभी का खेती यहाँ करत हुआ तो ओके मौसम से तो कुछ बहुत बड़ा प्रभाव तो ना पड़ेगा?
0: नहीं, आजकल तो 12 महीना पत्ता गोभी मिल रहा है
1: जी।
0: केवल बीज की बात मैंने कही कि बीज का उत्पादन जो होगा वो ठंडे प्रदेश में होगा। इसकी खेती तो हम कहीं भी कर रहे हैं, सब जगह कर ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे चाहे वो उष्ण कटिबंधीय हो, कटिबंधीय क्षेत्र हो, हाई ताप टेम्परेचर का हो, उस पर भी खेती आराम से की जा सकती है और हो रही है, बड़े अच्छे से हो रही है। इसमें जो किस्में निकाली गई है वहां से, जो अच्छी किस्में, जो अगेती किस्में हैं, जैसे गोल्डन एकर है, प्राइड ऑफ इंडिया है, ये किस्में जो हैं पुरानी किस्में हैं लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि पहले थी, और ये बहुत ही अच्छे, लगभग इसमें जो गोल्डन एकर है 350 क्विंटल तक इसका उपज मिल जाता है प्रति हेक्टेयर की दर से, और एक गोभी का लगभग जो वजन होता है 1 से 1.5 किलो तक का होता है इसमें। उसी तरह से जो प्राइड ऑफ इंडिया है, ये भी इसका जो वजन है लगभग 1 से 2 किलोग्राम तक हो जाता है और 350 से 400 क्विंटल तक इसका उपज मिल जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं वो रंगीन सब्जियां ज्यादा पसंद करते हैं, तो पत्ता गोभी में भी इस तरह की बहुत तरह की किस्में आ गई हैं। जैसे पूसा रेड कैबेज, वो लाल रंग का होता है, गहरे या बैंगनी कर लें या लाल रंग का होता है। जो पूसा रेड कैबेज 5 के नाम से है, इसमें ये थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन इसमें बाजार भाव किसानों को ज्यादा मिल जाता है।
1: अच्छा।
0: ये लगभग एक गोभी का वजन लगभग 800 से 900 ग्राम का होता है और 350 से 350 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज मिल जाती है। अगर किसान भाई लेट लगाना चाहते हैं तो एक पूसा ड्रम हेड वरायटी है जो कि लगभग 350 से 380 से 390 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज मिल जाती है। कुछ संकर किस्में भी निकाली गई हैं वहां से, जैसे पूसा कैबेज हाइब्रिड 1, पूसा कैबेज हाइब्रिड 81 जो हाल ही में निकाली गई थी, और लाल रंग के कैबेज में भी, पत्ता गोभी में भी एक हाइब्रिड है, पूसा रेड कैबेज हाइब्रिड 1। तो इन सब किस्मों का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं और उसमें समय से लगा के उसकी मुनाफा कमा सकते हैं।
1: खाद और उर्वरा शक्ति के बारे में इतनी बताएं कि एकर का वो लोग ध्यान रखें।
0: देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर जीवांश युक्त मिट्टी है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो उसमें लगभग हमको 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में जुताई के समय मिला देना चाहिए, और जो बाकी हमारी नत्रजन, फास्फोरस और पोटास हैं उसमें लगभग 100 से किलोग्राम नत्रजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस और 50-60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नत्रजन का 1/3 भाग और पोटास फास्फोरस का पूरा पार्ट खेत के अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए इसमें। बाकी नत्रजन को हम 2 से 3 भागों में बाद में जब हम अंतःसस्य क्रिया करते हैं तो उसमें अप्लाई करते हैं।
1: इसमें सिंचाई का प्रबंधन रहेगा चाहे?
0: देखिए, सिंचाई तो जैसे लगाया उस समय एक सिंचाई की आवश्यकता है, या सिंचाई करें अगर मेड़ पे लगा रहे हैं तो सिंचाई कर दें मेड़ में, डायरेक्टली हमको जहां पौधा लगाते हैं वहां पानी नहीं पहुंचेगा, वो नाली नाली में सिंचाई हो जाएगा। अगर हम पौधे हजारे से सिंचाई करते हैं तो हमको 2 से 3 दिन तक पौधे को देख देख के पानी देना पड़ेगा कि पौधा अपने पकड़ ले, पूरा तरह से स्थापित हो जाए, वो चल निकले, उसके बाद तो फिर उसकी जैसी आवश्यकता होती है मिट्टी की नमी के आधार पे हम सिंचाई उसमें करते रहते हैं।
1: रोग व्याध भी होता है
0: जी, इसमें कीट का एक प्रकोप होता है, 2 कीट हैं इसमें जो ज्यादा दिक्कत करती हैं, जैसे कि एक माहू आती है जो खासकर जनवरी फरवरी के महीने में आती है, तो उनको क्या है पत्तियों के नीचे वो ढेर सारी संख्याएं पड़ी रहती हैं, दिखती नहीं है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमको जैसे कि हम नीम का तेल होता है अजाडिरेक्टिन, उसका हम जैसे 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर समस्या है नीम उसकी तो एसिटामाप्रिट करके दवाई आती है जो 0.15 ग्राम प्रति लीटर के पानी भर कर छिड़काव कर सकते हैं माहों को रोकने के लिए। और दूसरा है एक डायमंड बैक मॉथ जिसे बोलते हैं, हीरक पृष्ठ जो कीट होती है, क्या होती है कीट के ऊपर ही

0: तीन धब्बे होते हैं वो डायमंड की तरह, जिसे हीरे की तरह चमकते हैं, इसलिए उसका नाम डायमंड बैक मॉथ रखा गया। इसके जो बचाव के लिए हमको ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं, जैसे चाइनीज कैबेज का एक ट्रैप क्रॉप, तो उसमें कीड़े ज्यादा उधर आकर्षित होते हैं, हमारा मुख्य फसल जो पत्ता गोभी है वो बच जाता है। इसमें भी अगर गंभीर समस्या है तो क्लोरफिनापिर दवाई है, फिप्रोनील है, या इंडोक्सा कार्ब है, या स्पाइनोसाइड है, इन सब का उचित मात्रा में सही समय पर प्रयोग करके बचाया जा सकता
1: तुड़ाई
0: है।
1: के समय किसान भैया लोग का ध्यान रखें।
0: देखिए, हार्वेस्टिंग का जो उसकी तुड़ाई होती है वो लगभग हमको लगता है कि 60 दिनों में तैयार हो जाती है। अगेती किस्में, जो पछेती किस्में होती हैं वो लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। उनको काट के और जो बाहर की पत्तियां हैं हटा के साफ सुथरे ढंग से अगर मार्केटिंग करते हैं, बाजार में ले आते हैं, तो उनको उसका अच्छा मुनाफा मिलता है। एक चीज मैं और कहूंगा कि कुछ तत्वों की कमी से भी पत्ता गोभी में दिक्कत आती है।
1: वो कौन सा?
0: खासकर दो तत्व ऐसे होते हैं जो बोरान और मॉलिब्डेनम। बोरान की कमी से क्या होता है कि जो उसके हेड होता है, जो पत्ता गोभी होता है, वो भूरे रंग का हो जाता है और खाने में कड़वा लगने लगता है। तो इस दशा में हम बोरेक्स की जो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा अन्य उर्वरकों के साथ मिला के डाल लेते हैं, या अगर खेत में बाद में पता चलता है तो 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर पर्णी छिड़काव करते हैं। इससे गुणवत्ता वाले जो पत्ता गोभी है वो प्राप्त होंगे। बोरान, अगर मॉलिब्डेनम कमी से क्या होता है कि इससे पत्तियों में हरे रंग की कमी हो जाती है और वो किनारे किनारे से पतले हो जाते हैं एवं नई पत्तियां विकृत हो जाती हैं। इसके बचाव के लिए 2 किलोग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट खाद के साथ मिला डाल दें, या 2.2 से 2.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में पानी छिड़काव करके इसका प्रयोग करके गोभी के आकार, गुणवत्ता और इसमें विटामिन सी भी वृद्धि पाई जा सकती
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, चलो चलो हमारे किसान फिर उनके खेती के बारे में का सुझाव दिया चाहब आप?
0: देखिए, पत्ता गोभी एक बहुत ही फायदेमंद और बहुत ज्यादा इसमें लागत नहीं लगता है, तो ये खेती बहुत ही फायदेमंद है। खास करके उस कंडीशन में जब हम आज देख रहे हैं कि इसका खपत हमारा सब्जी के साथ साथ फास्ट फूड में भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका 12 महीना डिमांड है। तो हम डिमांड के अनुसार अगर खेती करते हैं तो हमको मुनाफा शर्तीय रूप से ज्यादा मिलेगा। तो जो जैसी जैसी डिमांड वैसी खेती करें तो
1: बिल्कुल,
0: किसान भाई फायदा नहीं है।
1: आपका बात सुन के किसान भाइयों के गुनिया समझिया और एकर खेती जरूर करिया। आप हमने के कार्यक्रम में ही नहीं, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: समारोह भैया,
3: भैया देखा,
2: कितना निमन बात बताइना हमारे डॉक्टर साहब।
3: डॉक्टर राजेश कुमार भैया, आप
2: हाँ,
3: बतियाओ थोड़ा सतीश कुमार
2: सतीश
3: यादव
2: कुमार
3: भैया,
2: भैया
3: एक बात अब बहुत बढ़िया बताऊँ ना हो कि देखा, बोले पत्ता गोभी पौष्टिक सब्जी में आवला, दूसरा बार हमेशा इनका मांग बनल है बाजार में, है
2: बारहो महीना बनल है
3: बारहो महीना।
2: हाँ,
3: तो ऐसा खेती अगर हमन करत है जा तो हमन के सोने पर सुहागा।
2: सोने पर सुहागा भैया, अगर 1 बीघा पत्त गोभी लगा दिला ना,
3: हाँ हाँ हाँ
2: तो ये जाना ना कि 10-10 दिन के अंतराल पे, 20-20 दिन के अंतराल पे अगर बिया रोपत हुआ तो 10 दिन यहर का कटला, 10 दिन यहर का कटला, काटत काटत जो ना बढ़िया कमाई हो
3: अपन
2: जाले।
3: अपन ओकर जो संतुलन बनौला रहा, कब हमारा कितना जब इतना कट के जाई बाजार में तब
2: हाँ,
3: तक दूसर का पौधा पकड़ ली।
2: पकड़ ली।
3: तो देखा, ये चतुर किसान की कहानी है। और दूसर बात कि कोई भी खेती हो, डॉक्टर साहब भी बतौना कि देखा बीज कहाँ से हो चाहिए, पौध कहाँ से लिया हुआ है, निराई गुड़ाई से लेके दवाई तक बात बता देना है। ध्यान दे बहुत जरूरी है, सिंचाई कब करे के चाहिए, उन्नतशील प्रजाति होए के चाहिए, और ओकर जो रोग कीड़ा आवा है ओकरे पर ध्यान दे लोग तो फिर मुनाफा।
2: बढ़िया हुई। ऐसे पहले सलाह ले लेवे के चाहिए, देखा मट्टी का जांच करा ले, अच्छा अच्छा वैज्ञानिक लोगों के पहले बोला के चेक करवा ले या दिखवा ले। एमें एक बात बड़ा प्रमुख कहना, एक ठे माहो हो ले हो बीमारी
3: भैया, हाँ
2: आई बड़ा तेज लगेला।
3: भाई, तो वही करे
2: हाँ
3: बीमारी के दूर करे बदे दवाई भी बताऊ ना।
2: हाँ दवाई भी बताइना
3: लेकिन
2: हाँ
3: जोन बतिया बतौला माटी वाला, ये
2: हाँ
3: कितना बढ़िया कि माटी हमन के पता लग जाए कि माटी में कौन कौन तत्व तो कमी है, तो हिसाब से हमन अपन खाद पानी देवल जाए। लेकिन
2: जितना
3: सबसे बढ़िया बात भैया, दीना भैया बहुत बात बतौलो हुआ पहले पंचलो के आजू बता देते ही जा मन कि आज भी जैविक खेती का जरूरत है,
2: हाँ
3: तब
2: हाँ
3: पे अपन माटी सुधरी,
2: तब भी
3: माटी
2: अपन
3: के
2: माटी
3: स्वास्थ्य
2: सुधरी,
3: सुधरी।
2: स्वास्थ्य सुधरी स्वास्थ्य

0: सुधरी भैया ना
1: हाँ
0: जेबा भी जो ना
1: हाँ
0: मस्त रही। हाँ तो ये बताई ना सुमारू भैया कि
1: भैया।
0: जैसे घरे गोरु चौवा वाइन भाई जौन गोबर करत थे इनके जुटावा जा ओकरे बाद जैसे ही जब खेत खाली होला ओके जौन ना भैया पूरा खेते में छिटवा दा।
1: कभी
0: छिटवाइले के
1: अरे
0: बाद
1: हम तो
0: जौन
1: कहते
0: ना
1: गोबर का कंपोस्ट बना लें। हाँ
0: कंपोस्ट बनवा ला।
1: कंपोस्ट खाद प्रयोग करें लोग। हाँ एक बात सनी ढेचाल जो बोल रहा
0: हाँ
1: ओके कौन धाने में काम

0: बोले रहल
1: हाँ
0: ओके कोन धाने में काम हो गल
1: हाँ
0: है तो
1: हाँ
0: कहा करे हमारे रसायन के चक्कर पड़ल जाए।
1: हाँ
0: आज भी विज्ञानी लोग कहत हुआ कि भाई अब से भी सुधर जत जा, माटी के स्वास्थ्य सुधार जाए और जैविक खेती की तरफ बातचीत करा, रसायन से मोह भंग हो चाहिए।
1: देखा भाई, रसायन डलबा न तो वह पत्तो गोभिया में जो विटामिन ए या विटामिन सी मिलत है ना,
0: हाँ
1: वो मन न मिली।
0: न मिली तो यही बात हमारे कहले जा कि आज भी जैविक खेती के उपयोगिता बढ़ल जाता है, वही हिसाब से मन की खेती करे के चाहिए है, तब मन फरार हुए।
1: फरार रही भाई, देखा यही से भाई किसान भी खुश रहेलन ना। अगर तू रासायनिक खेती करत हुआ तो उसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा असर
0: मत
1: पड़ेगा।
0: पूछा भैया, लोग तरह तरह के बेरामी हो जाता, वैज्ञानिक भी चिंतित हुआ, डॉक्टर भैया लोग बताओ ना। और दूसरा बात कि हमान की खेती किसानी में जब बाजार में सौदा जाला तो ये देखा जा रहा कि जैविक विधि से जो सब्जी गायल हो
1: हाँ।
0: ओकर मांग अधिक हो,
1: ओकर मांग देखा अधिक होले
0: ओकर दाम भी अधिक
1: और
0: हो,
1: दाम भी अधिक है, सही कला।
0: है कि नहीं। तो ये हिसाब से हमन के अपने पैसा भी अच्छा मिला था, माटी भी हमार सुधरी और हमार पर्यावरण भी सुधरी। कल गल के शुद्ध पर्यावरण में शुद्ध शरीर रहेला,
1: कहे नहीं
0: है कि
1: भाई।
0: नहीं। पर्यावरण में देखा हमन बाल गोपाल लोग हुआ, हमन के तरह तरह के जीव चौगा हुआ, तो अपन ये भी धर्म बनेला कि हमन अपने खेती किसानी के साथ साथ अपने पर्यावरण पर भी ध्यान देवल जाए। ये तो बात हो गल। अब सुना पंच लोग जोत हुई कि दीना भैया कुछ गौ नहीं मन मनसान
1: हम
0: करवाओ,
1: समझती का कह चाहत हुआ।
0: तो हम कहते हैं बिरहा तो ही गा देता कहने यार।
1: नहीं देखा भाई, सरोज वर्मा है
0: हाँ
1: एक, तो सब बनारसी अंदाज में बनारसी कजरी सुनल जा।
0: सुनवा दा सुनवा दा।

0: बदरा चढ़ायल आसमनवा घेरी घेरी बरसे बदरिया ना।
1: देखा भाई कितना नीमन कहीं गौ नहीं।
0: अरे मत पूछा हो दीना भैया, अब सावन का महीना हो और कजरी न हो।
1: हरिहर भैले सारा सीवनवा बरसे रिमझिम सवनवा ना।
0: कितना बढ़िया लगा लो भाई हमारे के आके। देखा हमारे के आके विशेषता कि हर मौसम के गौ नहीं है। हाँ कि नहीं। ये तो भाई सरोज वर्मा के कजरी पंच लोग सुन लेना। अभी बताओ कल बिहने का जानकारी दिया।
1: कल बिहने 6:05 पे खेती की बातें में जो है ना विषय रही धान की फसल में सिंचाई और ओकर उर्वरक का प्रबंध। अच्छा। जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया
0: और संजय के पंचायत में ज्ञानवर्धक बातचीत भी हुई गौ नहीं भी हुई है। लेकिन कौन चीरे ये बात कब हुई? 28 तारीख की है। 28 तारीख के पंचायती में मानते हो कि नहीं?
1: काहे नहीं।
0: अच्छा अभी बतावा पंच लोग के यू बता दा कि देखा बरसाती मौसम चला था।
1: हाँ,
0: समय से अपन खेती बाड़ी कर सुबह शाम जाते हो तो समय से जाए दिन अच्छे से खेत निराई करके निगरानी करके चले।
1: भाई देखा तनी मनी बारिश भी हो तो थोड़ा सा कीड़ा बिच्छी भी निकलत हुआ तो भाई साथे साथे जब चला ना टहरी पे भैया
0: भैया
1: कैसे देखा ना हाथ में जब टारच ले ले देखा एक ही ले ले ला।
2: अभी किसान भाई सुने थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। आइए सुने अंग्रेजी कार्यक्रम में टॉक द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। टॉकर हैं डॉक्टर कविता आर्या।
3: रिस्पेक्टेड लिसनर्स गुड इवनिंग। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। कल्चरल डाइवर्सिटी is central to the national identity of our country, and I feel privileged to speak on a subject that is so rich, beautiful, and varied. India is not only a nation, but a civilization. From the snow-clad Himalayas in the north to the vibrant seas of the south, and from the deserts of Rajasthan to the lush forests of the northeast, India

0: कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आकाशवाणी वाराणसी के DRM यानी डिजिटल रेडियो मोंडियाल प्रसारण में आपका स्वागत है। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र द्वारा साइमलकास्ट DRM और प्योर DRM डिजिटल रेडियो टेरेस्टेरियल ट्रांसमिशन 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी के इन उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले DRM यानी डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन को DRM मोड वाले कार रेडियो में ट्यून किया जा सकता है, जहां बिना इंटरनेट के भी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर चार सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही समय में AIR समाचार, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत और फिल्म संगीत सुन सकते हैं। यहां जनरलाइन डेटा सेवा संक्षिप्त समाचार सेवा के रूप में उपलब्ध है और भविष्य में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली यानी EWF, यातायात अद्यतन, मौसम संबंधित सूचनाएं और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के DRM डिजिटल रेडियो प्रसारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.prasarbharati.gov.in पर जाएं और DRM डिजिटल रेडियो की नवीन तकनीकी विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.drm.org पर जाएं। नई DRM कार रेडियो पर आकाशवाणी वाराणसी के DRM डिजिटल रेडियो को सुनने के लिए 1233 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें, जरूर सुने।
2: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ DTH DRM न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार नेहा मिश्रा, पत्नी प्रदीप मिश्रा, निवासी देवकली, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर, घर से दवा लेने मेडिकल कॉलेज से दीकपुर जौनपुर गई थी, वहां से खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 28 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, इकहरा बदन, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये साड़ी पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना

सूचना मिलने पर कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर अथवा स्थानीय थाने पर सूचना दे सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार कलावती प्रजापति पत्नी श्रीराम प्रजापति निवासी काजीकोर थाना बड़ियाहू जनपद जौनपुर कहीं लापता हो गई हैं। इनकी उम्र 80 वर्ष है, कद 5 फीट, इकहरा बदन, रंग सावला और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना बड़ियाहू जनपद जौनपुर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार खुशबू हरिजन पुत्री संतोष हरिजन निवासी देवचंदपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर, ये शीतला माता चौकिया धाम से कहीं खो गई हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है, उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, इकहरा बदन, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों संबंधी सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी वाराणसी है। शाम के 7:18 हो रहे हैं, थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा।

0: धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारम्भ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
1: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
0: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में, कपिल देव अग्रवाल हापुड़ में, अनिल राजभर कौशाम्बी में, सुनील शर्मा गौतम बुद्ध नगर में, राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में और कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अम्बेडकर नगर, अयोध्या और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिले में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात कर दी गई है। नेपाल में बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों से प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज मेरठ के पुलिस लाइन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री वाजपेयी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका एम्स झज्जर से टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEE PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन कल रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अगले दिन 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन कल रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया। जगह जगह मिलाद जुलूस भी निकाले गए। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मोहम्मदी और जुलूसे मदहे सहाबा निकाले गए। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में मोहम्मदी मिशन द्वारा जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जो कि चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर एक जलसे में परिवर्तित हो गया। वहीं जुलूस मदह साहबा अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडा वाला पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक गया। जुलूस में विभिन्न अंजुमन नाद पढ़ते हुए चल रही थी। इससे पहले कल रात भर शहर के विभिन्न स्थानों पर जलसों और मुशायरों का आयोजन किया गया, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। जुलूस के रास्तों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सबील और भंडारों का आयोजन भी किया गया। मुमताज अली, आकाशवाणी लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सुल्तानपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और अमरोहा में भी मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: ईद मिलादुन नबी के मौके पर अमरोहा में भी आज जुलूस मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाद पड़ी गईं। जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गयी। सुरक्षा के चलते जुलूस के साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल

0: सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुना रहे हैं नुसरत फतेह अली खां और राहत फतेह अली खां की आवाजों में फिल्म बादशाह का एक गीत। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार तनिष्क बग्गी।

अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और जसविंदर नरूला की आवाजों में फिल्म हमराज का एक गीत। शब्दकार हैं सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और जसविंदर नरूला को, फिल्म थी हमराज। अब आइए फिल्म हंगामा के गीत सुने। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं, शब्दकार हैं समीर और संगीत रचना नदीम श्रवण की है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और पंकज उधास की आवाज़ों में समीर का लिखा एक गीत। संगीतकार है आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम है जिगर।

और अब कार्यक्रम के अंत में आई सुने फिल्म बागी का एक गीत। आवाजें मीत प्रास और मोनाली ठाकुर की हैं। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार मीत ब्रॉस।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, रात्रि की 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं समृद्धि गुप्ता। आज आप सुनेंगे इनके आवाज में भजन। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाए इन्हीं की आवाज में मेरा बाई की ये रचना।

0: अभी आप सुने थे समृद्धि गुप्ता की आवाज में ये भजन। इसी भजन के साथ सुगम संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
3: आकाशवाणी वाराणसी के डीआरएम यानी डिजिटल रेडियो मोंडियाल प्रसारण में आपका स्वागत है। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र द्वारा साइमलकास्ट डीआरएम और प्योर डीआरएम डिजिटल रेडियो टेरेस्टेरियल ट्रांसमिशन 1233 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी के इन उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले डीआरएम यानी डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन को डीआरएम मोड वाले कार रेडियो में ट्यून किया जा सकता है, जहां बिना इंटरनेट के भी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पर चार सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। आप एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही समय में AIR समाचार, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत और फिल्म संगीत सुन सकते हैं। यहाँ जनरलाइन डेटा सेवा संक्षिप्त समाचार सेवा के रूप में उपलब्ध है और भविष्य में आपातकालीन चेतावनी प्रणाली यानी EWF, यातायात अद्यतन, मौसम संबंधित सूचनाएं और मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी के DRM डिजिटल रेडियो प्रसारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.prasarbharati.gov.in पर जाएं और DRM डिजिटल रेडियो की नवीन तकनीकी विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.drm.org पर जाएं।
0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि की 8:15 हो चुके हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। यह गीत हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी अब लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता का गीत सुने थी। अब आइए लता मंगेशकर और मुकेश को सुने। फिल्म का नाम पत्थर की सनम, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आइए फिल्म प्रेम बंधन का गीत सुने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में फिल्म जाने अनजाने का एक गीत। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

अब आइए लता मंगेशकर और इला अरुण को सुने। फिल्म है लम्हे, शब्दकार हैं अनंत बख्शी और संगीतकार शिवहरी। फिल्म का नाम लम्हे।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने फिल्म वारिस का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत रचना उत्तम जगदीश की है।

0: फिल्म वारिस के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधवी अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन और

0: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
1: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी, केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत

की विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि

0: काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
2: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and

0: उम्मीद है ये गज़ल पसंद आई होगी। अच्छा संगीत समय की सीमाओं से परे होता है। वर्षों बाद भी जब वही धुन कानून पड़ती है तो उससे जुड़ी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यही संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जगजीत सिंह के गाया ये गज़ल।
1: आज की महफिल का ये आखिरी नगमा पेश कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से,

श्रोताओं, गज़ल की यही खासियत है कि कम शब्दों में गहरी बात कह जाती है। मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद और जिंदगी के अनेक रंग गज़लों में बड़ी नफासत के साथ उभरते हैं। अब ऐसे ने मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। संगीत की दुनिया में हर धुन एक नई कहानी कहती है। कुछ धुनें हमें अपने बचपन में ले जाती हैं तो कुछ भविष्य के सपनों को नया रंग देती हैं। अब समय है एक और सुरीली प्रस्तुति का, आवाज गुलाम अली की, रचना सलमान

इसी के साथ आज की संगीत भरी महफिल अंजुमन यही संपन्न होती है। आशा है गीत और गजलों का यह कार्यक्रम आपके मन को मधुर स्मृतियां छोड़ गई होगी। आपका स्नेह और विश्वास

0: अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी वाराणसी है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है बट वृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत।
1: नमस्ते, मेरा नाम अनु जायसवाल है और आज हम लोग बट वृक्ष कार्यक्रम में आए हुए हैं। और बट वृक्ष कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जो वृद्धावस्था है के बीच में होने वाली बीमारियां हैं, थर्मल थेरेपी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे पास मनीष यादव जी बैठे हुए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये थर्मल थेरेपी होती क्या चीज़ है।
2: थर्मल थेरेपी के बारे में आप जानकारी लेने के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थर्मल थेरेपी एक तरह की गर्म थेरेपी होती है, हीट थेरेपी। इसके इस्तेमाल करने से इंसान के शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, इस तरह की बीमारियों में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। थर्मल थेरेपी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से शरीर को गर्मी देना, एक गर्मी शरीर के अंदर प्रवेश कराकर उनके तकलीफ में राहत देना, ये थर्मल थेरेपी का मुख्य काम है। थर्मल थेरेपी की जो शुरुआत है, अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से हुई है। आज हमारे भारत देश में भी काफ़ी जगहों पर थर्मल थेरेपी के इस्तेमाल कराया जा रहा है। दूसरी चीज़, थर्मल थेरेपी के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये एक सेफ तरीका है शरीर से दर्द को ख़त्म करने का।
1: तो सर, जैसा कि आपने बोले गर्म थेरेपी, तो ये गर्म थेरेपी क्या चीज़ होता है, किस चीज़ की गर्मी होती है?
2: थर्मल थेरेपी में हम जो हीट का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, वो FIR रेज होती है, जैसे कि फार इंफ्रारेड रेड रेज। इसको अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ये होती है सूरज से मिलने वाली सुबह की धूप। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की धूप होती है वो काफ़ी कोमल होती है और इंसान के शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसीलिए हम लोग थर्मल थेरेपी के अंदर इस प्रकार की गर्माहट का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है।
1: ये जो होता है फार इंफ्रारेड रेज की गर्मी होती है, तो ये किस प्रकार के उपकरण से कराई जाती है, कैसे ये जो होता है?
2: इसके लिए तमाम प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं, जिसमें से एक होती है हीटिंग मैट। हीटिंग मैट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक स्टोन लगाते हैं, विशेष प्रकार के वो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं। जब उनको उनको गर्म किया जाता है, यानी कि उसको जब किसी बिजली के उपकरण से उसको जब गर्माहट दी जाती है, तो उसमें से FIR रेज निकलती है। और उसको यूज़ करने के लिए कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह कॉटन की, कपड़े जो पहनकर हम लोग थेरेपी कराते हैं वो भी कॉटन की होती है। कॉटन के बेडशीट का इस्तेमाल बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से।
1: अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कॉटन कपड़ा, तो ये FIR रेज जो होता है, तो कॉटन का जो कपड़ा ये तो सही है, लेकिन जैसे कैसा कपड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए कि किस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए?
2: लाइट कलर

0: का कपड़ा रहेगा तो अच्छा है। वैसे हम लोग जहाँ कराते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सफेद कलर का कपड़ा यूज करें।
1: तो सर ये जो उपकरण आप बता रहे हैं कि स्टोन, तो स्टोन के माध्यम से ही सारी थेरेपी कराई जाती है।
0: जी,
1: इसमें किस प्रकार की मशीनें, क्या चीज होता है?
0: इसमें कई प्रकार की मशीनें होती हैं आजकल, देखिए कई तमाम प्रकार की। जैसे कि एक तो हो गई हीटिंग मैट। हीटिंग मैट वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसको, देखिए आजकल जितने भी उपकरण आते हैं सब चलाने के लिए बिजली का सहारा लेना पड़ता है, तो ये जो हीटिंग मैट है इसको भी चलाने के लिए बिजली का सहारा लिया जाता है। लेकिन उसके लिए हम लोग उस मैट के अंदर एक ऐसी सिस्टम को बनाया जाता है, एक ऐसा रिमोट बनाया जाता है जिससे कि वो मैट के अंदर जो करंट आता है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी करंट में, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको बिजली के करंट से कोई नुकसान ना हो। तो उसको पूरी सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। एक तो हो गई मैट, दूसरे नंबर पे एक आती है हीटिंग बेड। तो हीटिंग बेड का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हीटिंग बेड होते हैं उसके ऊपर इंसान अगर लेट कर थेरेपी करे तो उसकी स्पाइन के ऊपर से मसाज होती है, मसाज करके वो हीट को शरीर के अंदर प्रवेश भी कराती है, साथ साथ में मालिश भी करती है। तीसरे नंबर पे और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे बेल्ट आते हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल करना है, कमर में इस्तेमाल करना है, तो एक हीटिंग बेल्ट आती है, आप उस बेल्ट को भी लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा, और इन सब में वही स्टोन के माध्यम से ये सारी चीजें कराई
0: जी,
1: जाती
0: वो जो
1: हैं।
0: स्टोन होते हैं साउथ कोरिया में ही ज्यादातर बनते हैं, वहाँ से ही आते हैं। उस स्टोन को बनाने के लिए कई प्रकार के स्टोन यूज़ किए जाते हैं, मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टोन के अगर नाम लें तो जिसमें जर्मेनियम, सल्फर हो गया,
1: जी
0: सिल्वर हो गया, इस प्रकार से तमाम प्रकार के स्टोन्स होते हैं जिनको मिक्स करके इस स्टोन को बनाया जाता है। और इन स्टोनों की खासियत ये होती है कि जब ये गर्म होते हैं तो इसमें से FIRS निकलती है।
1: तो उसी के माध्यम से सारी थेरेपी
0: जी
1: कराई
0: जी
1: जाती है।
0: उसी से कराई जाती है।
1: अच्छा, तो सर क्या इसको केवल वृद्धावस्था के लोग ही ले सकते हैं कि सभी कोई ले सकते
0: ये
1: हैं?
0: जो थर्मल थेरेपी है, जैसे आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो लोगों का काम जो है ज्यादातर बैठकर है, वर्क फ्रॉम होम भी आजकल चल रहा है, लोग बैठकर ज्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत सारा हो रहा
1: ये क्या वृद्धावस्था के लोग ही कर सकते हैं सर?
0: है। देखिए अनु जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्धावस्था में ही इसको किया जा सकता है। जैसे कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से हमारा रहन सहन है, तो उस रहन सहन खान पान के अनुसार अगर हम देखें तो कम उम्र के लोगों को भी बैक पेन शुरू हो जा रही है आज के समय में। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, कम उम्र में भी लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल, आजकल जो मोबाइल का चलन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मोबाइल की वजह से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कम उम्र में भी हो रही है। लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को बैक पेन वगैरह काफ़ी हो जाती है। तो ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जिनके शरीर में किस प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसमें राहत देने के लिए कम उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग अवस्था के लोगों को ये ज़्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उनके पास उनके उस अवस्था में, जैसे जब व्यक्ति 40 के ऊपर जाता है, तो जैसे हम 40 के ऊपर जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर से मसल्स जो है 1% से कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि शरीर की जो मसल्स कमज़ोर होती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्ग अवस्था में मसल्स की मात्रा कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में दर्द ज़्यादा रहता है, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
1: तो जैसे ये कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, तो कमर में घुटने के दर्द के लिए सर ऐसा कौन सी मशीन है जिसपे की थेरेपी करें तो काफी रिलीफ मिलेगा? ऐसा क्या चीज होना चाहिए?
0: देखिए हमारे पास एक थर्मल जो मैट, थर्मल मैट जिसको बोला जाता है, थर्मल मैट के इस्तेमाल से घुटने दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, लगभग सभी चीज़ों में लाभ मिलता है।
1: तो ये थर्मल मैट जो हो बता रहे हैं आप, तो थर्मल मैट में क्या चीज लगा हुआ है?
0: थर्मल मैट में मैम एक तरह का विशेष प्रकार का स्टोन लगा है, पत्थर लगा है,
1: अच्छा,
0: उस पत्थर से जो गर्माहट मिलती है वो FIRS की मिलती है, इसी वजह से ही फायदा होता है।
1: तो ये स्टोन कितने मात्रा में लगा हुआ, उसमें क्या एक दो लगा हुआ है या कैसे लगा हुआ
0: नहीं, ये
1: है?
0: छोटी छोटी साइज में होते हैं, एक मैट में लगभग 1000 के ऊपर स्टोन लग जाते हैं और छोटे छोटे साइज में होते हैं, तो इंसान को उस पर लेटने में भी कंफर्टेबल रहे इसीलिए उसको इस तरह से बनाया जाता है। उसको उपकरण को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान रहे, इसलिए छोटे छोटे स्टोन्स को इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो सुविधाजनक हो और व्यक्ति उस पर आराम से थेरेपी कर सके।
1: तो इसपे क्या छोटे बच्चे भी थेरेपी कर सकते हैं?
0: छोटे बच्चे भी कर सकते हैं मैम, लेकिन बच्चों को रहा बात बच्चों की, तो बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए बच्चों को थेरेपी करा तो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने

0: पर्सनल डॉक्टर हैं, उनका सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: और सर जैसा कि देखा जाए इस समय बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, अनेक प्रकार की, कमर में घुटने के साथ साथ आप देखिए तो अभी गठिया जैसी बीमारी भी बहुत लोगों को हो रहा है, तो क्या गठिया जैसी बीमारी के लिए भी ये जो आप बता रहे हैं थर्मल थेरेपी में मैट है, तो क्या उससे उसका बेनिफिट मिलेगा?
0: बिल्कुल मैम, उससे लाभ तो ज़रूर मिलेगा। देखिए गठिया में इसका लाभ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि गठिया में क्या होता है कि इंसान के शरीर में ठंड के मौसम में, गठिया वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, अगर आप देखेंगे जो भी लोग हैं ठंड के मौसम में, उनके उनकी जो तकलीफ़ है थोड़ी बढ़ जाती है। और जैसे ही उनके शरीर के अंदर गर्माहट दी जाती है, तो गर्माहट से क्या होता है उनको थोड़ा सा उस दर्द में आराम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के समय में लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है
1: जी जी
0: उसमें नमी आ जाती है,
1: जी
0: तो नमी आने की वजह से वो दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद होता,
1: बिल्कुल
0: सही है? तो इसी प्रकार से गठिया वाले पेशेंट्स की हड्डियों के अंदर भी इसी प्रकार की कुछ परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। अब ऐसे में जब वो थर्मल थेरेपी की मैट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दर्द भी कम होता है, सूजन भी कम होती है, और काफ़ी अच्छा राहत जो है गठिया वालों को इससे मिलता है।
1: मतलब कि इससे काफी अच्छा
0: जी
1: फायदा
0: जी
1: मिलता है।
0: इसको लंबे समय तक करना पड़ता है, काफ़ी समय तक करना पड़ता है क्योंकि गठिया की जो परेशानी है इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए उसको लंबे समय तक करना पड़ता है।
1: अच्छा, जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि अभी हम पूछे कि आपके यहाँ किस किस तरह की मशीनें हैं, कौन से उपकरण से थेरेपी करा जाती है, तो आप बताएं कि बेड है और उस पर लेटते हैं, मसाज होता है, तो ये जो बेड है उस पर लेटते हैं, ये मसाज किस तरह से होता है?
0: देखिए ये जो थेरेपी वाले जो बेड हैं, ये बेड इस तरह से बनाए जाती हैं कि ये आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पर, ये मशीन के जो रोलर होते हैं रीढ़ की हड्डी पर चलते हैं, और कुछ उपकरणों में पैरों की तरफ भी लगाए जाते हैं रोलर, जैसे कि पैर की भी मसाज होती है और रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी पे एक रोलर होता है जो कि इसी स्टोन से बनाया जाता है, वो मसाज करते हुए आपके सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर तीनों जगहों पर ये गर्माहट के साथ मसाज करता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं, उनको गर्माहट मिलती है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से आ जाता है। क्योंकि शरीर का जो मेन, अगर देखा जाए तो इंसान के शरीर का जो मेन चीज़ है वो रीढ़ की हड्डी है,
1: जी
0: तो रीढ़ की हड्डी अगर सही रहेगी तो आपके शरीर की सारी संरचना सही रहेगी। तो थर्मल थेरेपी में जो बेड का निर्माण किया गया है, लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल थेरेपी में जो बेड है, उसका मेन काम यही है कि आपकी स्पाइन को सही दिशा में रखें।
1: अच्छा, मतलब कि जब अगर इस बेड पे, हाँ, जो भी व्यक्ति, अगर किसी को प्रॉब्लम है कमर में और सर्वाइकल जैसे दिक्कत है, अगर वो लेटता है तो उसकी जो भी ये दिक्कत है तो धीरे धीरे
0: हाँ
1: उसको
0: बिल्कुल,
1: रिलीफ मिलता है।
0: सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर, ज़्यादातर
1: जी
0: देखिए सर्वाइकल के हिस्से में लोगों को परेशानियाँ आती हैं, सर्वाइकल होने की वजह से लोगों के गर्दन में दर्द हो जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब हम हमारे मैट इस बेड पे लेटते हैं, जो हम थर्मल थेरेपी बेड है, जब इस पे कोई व्यक्ति लेटता है तो वो सर्वाइकल के हिस्से पे मशीन रोल करती है, रोलर की तरह चलती है, हल्का मसाज करती है, और मसाज करने से क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स है वो अच्छी हो जाती है, नसों के ऊपर भी थोड़ा सा,
1: सर्वाइकल कहाँ सर?
0: गर्दन,
1: जैसे
0: गर्दन के
1: गर्दन।
0: हिस्से पे,
1: जी
0: गर्दन पे टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे सर्वाइकल के हिस्से में ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम
1: अच्छा,
0: आती है। और उसके अलावा बैक पेन, यानी कमर की दर्द अगर है तो उस बेड पे लेटने से कमर के दर्द में भी वो रोलर अच्छे से मसाज करता है, जिसमें उनको लाभ मिलेगा।
1: तो ये लाभ कितने दिनों में समझ में आता होगा सर, अगर जैसे जिसको प्रॉब्लम है?
0: देखिए ये लाभ कितने दिन में समझ में आता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल सा दर्द है तो इसमें आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा।
1: मतलब कि आपके कहने का कि इंसान की परेशानी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर ज्यादा लंबे समय की परेशानी है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अगर कम समय का है तो रिजल्ट तुरंत मिलता है।
0: जी,
1: जी, अब हम आप दूसरा टॉपिक, जैसे आप बता रहे थे एक बेल्ट होता है, तो उस बेल्ट को जब हम, आप बता रहे हैं, यूज कराते हैं, तो वो बेल्ट कहाँ पे यूज किया जाता है?
0: बेल्ट का इस्तेमाल जो है हम लोग कमर पे कर सकते हैं, जैसे कि कमर में ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है, लुम्बर का L1 से लेकर L5 के बीच में, यहाँ पे परेशानी ज़्यादातर क्या होती है कि नसें दब जाती हैं या हड्डी में गैप बढ़ जाता है या इस प्रकार से कोई परेशानी हो जाती है, मसल्स में दर्द होता है, तो कमर में बेल्ट को बांध के रखने से वो भी हीट होता है, टेम्परेचर उसका लगभग 35 से लेके 50-55 तक जाता है सेंटीग्रेड में। तो इसको यूज़ करते समय बस इतना ध्यान रखना होता है कि इसको डायरेक्ट स्किन टच नहीं करते हम, इसको यूज़ करते समय आपको एक बाकायदा एक कॉटन का

0: कपड़ा यूज़ करके मतलब लगा के उस एरिया पे, फिर आप उस बेल्ट को लगाएंगे कमर पे डायरेक्ट, तो आपको कमर के दर्द में राहत मिलती है। पेट पे भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको वजन वगैरह का कम करना होता है, क्योंकि ये हीट थेरेपी है तो इससे फैट भी आसानी से
1: तो
0: कम
1: क्या
0: होता है।
1: उसमें भी स्टोन लगा रहता है?
0: जी, स्टोन की ही गर्माहट दी जाती है ना।
1: जो ये गर्माहट है वो जिस भी मशीन में है सब में वो स्टोन ही लगा
0: जी,
1: हुआ है।
0: स्टोन की वजह से।
1: ये जैसे पर्टिकुलर कोई एक बीमारी में काम करता है कि सारी बीमारियों में ये काम
0: देखिए,
1: करता है?
0: इसको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, नहीं हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको इस्तेमाल शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए है, किसी एक बीमारी से जोड़कर हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो ये प्रिकॉशन की तरह है। इंसान जिस प्रकार से 18-20 साल की उम्र में जिम में जाकर कसरत करता है
1: जी,
0: ताकि मसल्स अच्छी
1: मसल्स।
0: बनी
1: हाँ,
0: रहे उस उम्र में, तो 50-60 की उम्र में इंसान जिम जाकर कसरत तो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उस उम्र के लोगों के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है, ये प्रिकॉशन है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान करता रहे, थर्मल थेरेपी का सहारा अगर इंसान लेता रहे, तो बुजुर्ग अवस्था में उसको तो परेशानियां तो आएंगी लेकिन उतनी परेशानी नहीं आएंगी।
1: मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि ये जो 18-20 साल के लोग जो जिम जाते हैं तो ये वृद्धावस्था का एक प्रकार का जिम है ताकि वो अपने आप
0: हाँ,
1: को
0: ये
1: फिट
0: आप
1: रख
0: कह सकते
1: सकें।
0: हैं।
1: तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे इस थेरेपी को करने के दौरान कुछ खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है या किसी चीज की सावधानियां बरतनी पड़ती है कि ये चीज मत खाइए ऐसा कुछ?
0: नहीं, खाने पीने का तो विशेष कोई विशेष ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे कि गर्म थेरेपी है, हीट थेरेपी है, तो शरीर के अंदर गर्माहट जाती है, तो कोशिश ये रहे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर इस थेरेपी को करें ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। जितना पानी पिए रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी खाने वाने की का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप खाकर थेरेपी। हाँ, खाने के बारे में आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब
0: हाँ
1: अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो
0: जी
1: आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाने पीने में आप परहेज कर सकते हैं,
0: जी
1: आपके कहने का तात्पर्य ये है। जी, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर कि जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि पानी के लिए आप बोले हैं, तो यहाँ पे जैसे आमतौर पे किसी को कोई दिक्कत होता है डॉक्टर के यहाँ जाता है दवा लेता है, लेकिन ये थेरेपी के माध्यम से अगर समस्या हमारी दूर हो रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जैसे गठिया के हो चाहे सर्वाइकल जो भी आप बता रहे हैं, ये अगर हम कर रहे हैं तो हम रिलीफ मिल रहा है, तो ये कैसे वो थेरेपी के माध्यम से रिलीफ मिल रहा है या उसके लिए कुछ और ऐसी कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ी उसके साथ साथ?
0: नहीं, थेरेपी का जो मेन काम है, जैसे मैंने बताया, थर्मल थेरेपी में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जब ये गर्माहट जाती है तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, मसल्स को अच्छा करता है, तो इससे क्या होता है कि आपको ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है। अब ये आपको अगर कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए या फिर, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना है।
1: अच्छा सर, ये बताइए आपका खुद का अपना थेरेपी सेंटर है?
0: जी
1: जी, ये थेरेपी सेंटर में आपके यहाँ किस ढंग के लोग, किस तरह के बीमारी के लोग ज्यादा आते होंगे?
0: देखिए अनु जी, ऐसा है, बीमारी के हिसाब से तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा आते हैं। एक उम्र, जैसे आपने बताया कि 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो बैक पेन, कमर यानी कि कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल के से जुड़ी समस्या वाले लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं,
1: अच्छा,
0: और कुछ दिनों में उनको लाभ भी मिल जाता है,
1: कुछ
0: मिल रहा
1: दिनों
0: है।
1: में सर हमें पूछना चाहेंगे जैसे लगभग मतलब कितने दिनों में, कुछ दिनों में जैसे
0: कुछ
1: इस तरह
0: दिनों
1: के
0: में
1: पेशेंट आते हैं तो जैसे कुछ एक समय होता होगा ना
0: देखो फर्क,
1: हफ्ता?
0: तो देखिए फर्क तो उनको पहले दूसरे दिन करने से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होती है तो पहले दूसरे दिन से ही उनको फर्क समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति की तकलीफ अलग अलग है, तो उसके अनुसार उसके शरीर के ऊपर, उसे खान पान का कैसा है, क्या सिस्टम है, रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है थेरेपी के बारे थेरेपी का असर दिखता है।
1: लेकिन दिखता सबको है,
0: हाँ
1: दिखता सबको है। और
0: देखिए,
1: ये
0: मैंने क्या बताया कि ये एक तरह का प्रिकॉशन है ना, अगर अगर आपको कमर में दर्द नहीं है फिर भी अगर आप इसको कर रही हैं तो आपको जल्दी मतलब कभी ये दर्द तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप पर तकलीफ है तो आजकल लोग सजेस्ट भी करते हैं, डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट
1: बिल्कुल
0: करते हैं, ये
1: बिल्कुल।
0: सारी चीज़ों के
1: हाँ
0: लिए सजेस्ट
1: हाँ
0: करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस थेरेपी से ही सही होती हैं। तो अभी ये
1: अच्छा,
0: थर्मल थेरेपी थोड़ा सा एडवांस है।
1: एडवांस मतलब थेरेपी तो है लेकिन ये एडवांस थेरेपी है।
0: जी,
1: जी, और जैसा कि आप बोल रहे
0: थर्मल
1: हैं
0: थेरेपी का देखिए, जैसे अगर हम लोग बात कर

0: करें तो हीट थेरेपी का शुरुआत जो है ना बहुत पहले से है, पर हम उसके बारे में अवेयर उतने नहीं थे। क्योंकि पहले के समय में जब युद्ध वगैरह होते थे, राजा महाराजा लोग लड़ाई करते थे, तो उस समय जो बड़ी बड़ी चोट लगती थी लोगों को, तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या करते थे, अपने खंजर को गर्म करके
1: जी,
0: और फिर वहाँ पे उसको
1: हाँ,
0: सेकते हैं,
1: सेकते थे गर्म
0: जिसकी वजह
1: करके,
0: से वो जख्म का निशान तो रहता था उनके शरीर पे, लेकिन पॉइजन उनके शरीर में नहीं फैलता था,
1: नहीं
0: इंसान
1: फैलता।
0: जिंदा रहता था।
1: जी,
0: और हीट थेरेपी जो होती है, थर्मल थेरेपी में हीट थेरेपी जो होती है, ये तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कि स्टीम बाथ लेते हैं वजन कम करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए स्टीम बाथ वगैरह का भी चलन है।
1: बहुत सारी चीजें। हाँ,
0: जी, तो वो एक अलग तरीका है, ये थोड़ा सा तरीका अलग है। थर्मल थेरेपी में जैसे कि हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करके बॉडी को हीट गर्माहट दे रहे हैं, वहाँ पे जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें भाप का इस्तेमाल करते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने के लिए भी हीट थेरेपी का बड़ा ही अच्छा योगदान है।
1: अच्छा, तो मतलब जैसे कैंसर जैसी बीमारी में भी ये
0: ये हाँ बिल्कुल
1: थेरेपी लिया
0: बिल्कुल,
1: जा सकता है।
0: कैंसर जैसी बीमारी में ये अच्छे से आपको लाभ दे सकता है। यानी कि जो आप थेरेपी, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, देखिए उसका जो ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर आप इस थेरेपी को कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। मैट क्या है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है।
1: अच्छा
0: कैंसर
1: अच्छा
0: के जो सेल्स होते हैं वो जब शरीर का तापमान कम होता है, जैसे जिसको कैंसर हो जाता है उसकी बॉडी का तापमान कम हो जाता है।
1: अच्छा जी, ऑटोमेटिक कम होने
0: हाँ, तो
1: लगता
0: इस
1: है।
0: शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो ये हीट थेरेपी क्या करेगी, अगर इसका इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट्स भी अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देगा, सपोर्ट करेगा उनको ठीक होने में।
1: मतलब आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा,
0: जी,
1: टेम्परेचर को कम नहीं होने देगा। तो इसके लिए आप थर्मल थेरेपी के लिए सर और क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा चीज है, लोगों को करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए थर्मल थेरेपी की जो जब से मैं जान रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं इस चीज़ को करते हुए, और 1992 से इसकी शुरुआत लगभग हमारे यहाँ पे इंडिया में हुई है,
1: अच्छा, उन्नीस सौ
0: और
1: बानवे
0: कई जगहों पे धीरे धीरे, पहले तो कुछ बड़े शहरों में ही हो रहा था थर्मल थेरेपी, लेकिन आजकल हर एक शहर में काफ़ी जगह पे अलग अलग नाम से इसको स्टार्ट किया गया है, अलग अलग जगह पे इसको लोग करते हैं, लाभ भी ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरे हर जगह पे ये सेंटर है, वहाँ जाकर लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कमर और घुटने के पेशेंट आपके यहाँ ज्यादा आते हैं, तो सर क्या घुटने के लिए कुछ स्पेशल कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप लोग थेरेपी कराते हैं, या मैट के माध्यम से ही कराते हैं सिर्फ?
0: नहीं, घुटने के लिए जो हमारे पास थेरेपी है उसमें हम लोग टेंस थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल कराते हैं। वो टेंस थेरेपी यानी कि उसी उपकरण एक ऐसा होता है जिससे उनकी घुटने में लगाकर वाइब्रेशन और टेंस थेरेपी भी कराई जाती है, उससे भी
1: अच्छा
0: लोगों को लाभ मिलता है।
1: अच्छा अच्छा मतलब उसको घुटने पे लगा के टेंस थेरेपी होता है, तो क्या वो कैसा होता है, पैच टाइप में कैसा क्या होता है वो?
0: पैच की तरह ही होता है, मतलब एक छोटे छोटे पैच होते हैं वो चिपकाते हैं, फिजियोथेरेपी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: फिजियोथेरेपी वाले
1: उसको
0: इसका।
1: लगा के, वो टेंस थेरेपी उसको बोलते हैं, उससे लगा के किया जाता है जिससे आपके घुटने की समस्या धीरे धीरे दूर होती है।
0: जी
1: अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे सर बेल्ट के बारे में कि इतने स्टोन लगे होते हैं, तो आपके यहाँ बेल्ट है और अभी आप बताए हैं कि घुटने के लिए पैच लगा के टेंस थेरेपी, तो आपके यहाँ और भी क्या क्या सुविधाएं हैं, और कौन की किस तरह की मशीनें हैं, चाहे
0: देखिए
1: थर्मल थेरेपी में किस प्रकार की ये सारी मशीनें आती हैं?
0: जी, थर्मल देखिए हमारे पास जो थर्मल थेरेपी के अंदर हम लोग तमाम प्रकार के उपकरण रखे हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें अभी हमने एक ऐसी मशीन है जो नर्व स्टिमुलेटर की काम करती है, NSM हम लोग बोलते हैं, नर्व स्टिमुलेटर मशीन। तो ये नसों के ऊपर वाइब्रेशन का काम करती है, इस पे खड़े होकर जब हम थेरेपी करते हैं या बैठकर थेरेपी करते हैं तो ये शरीर के अंदर कंपन पैदा करती है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता है, मांसपेशियाँ भी अच्छी होती हैं और तमाम प्रकार के उससे लाभ मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मसाज चेयर भी हम लोग रखते हैं, मसाज चेयर ये भी बहुत आजकल चलन में है।
1: ये
0: मसाज
1: मसाज
0: चेयर,
1: चेयर क्या होता है?
0: मसाज चेयर से शरीर का मसाज होता है और मालिश होता है एक तरह से, और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं,
1: अच्छा,
0: जैसे कि रक्त के संचार में सुधार, मालिश करने से आप सभी को, हम सभी को पता है कि मालिश जो है हमारी बचपन से होती आ रही है। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का 1.5 महीने का होता है, जब से हम लोग 1 दिन का 2 दिन का होता है तब से हम लोग उसकी मालिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पहले लोग कहावत भी कहते थे कि बचपन की गई भी मालिश बुढ़ापे तक काम आती है। तो मालिश करने से

0: क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं, रक्त संचार अच्छा हो जाता है, जोड़ों का जो जकड़न होता है वो कम हो जाता है, शरीर में लचीलापन बढ़ जाता है, जैसे दर्द में राहत मिलता है, जैसे आपको हम सभी को
1: मतलब
0: पता है
1: कहने का
0: जैसे
1: एक तरह से देखा
0: हाँ,
1: जाए तो ये फुल बॉडी मसाजर है।
0: तो ये चेयर एक इस तरह से बनी होती है कि इसके अंदर आप जब बैठ जाते हैं तो आपके पैर से लेके कंधे को, हाथ, रीढ़ की हड्डी, सब चीज़ों पे अच्छे से मसाज करती है, और मसाज करने की वजह से शरीर पूरी तरह से रिलैक्स में आ जाता है।
1: अच्छा।
0: जैसे आप कहीं लंबे सफ़र पे ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, या फिर आप बहुत देर से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर और बहुत बैठकर काम कर रहे हैं और आपकी बैक में दर्द हो रहा है या
1: बैकसाइड।
0: शरीर में बहुत
1: जी
0: ज़्यादा
1: जी
0: थकावट सा महसूस हो रहा है, तो एक बार आप उस मसाज चेयर पर बैठ जाएंगे तो मात्र 20 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर वापस आ जाएंगे।
1: मतलब एक बार अगर उस पे हम थेरेपी लेते हैं तो 20 मिनट में पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। तो
0: जी
1: इस तरह की सारी मशीनें आपके पास हैं,
0: जी
1: तो जैसे कि आप क्या क्या बताए हैं कि मसाज चेयर बता रहे हैं,
0: कई सारे
1: मॉम
0: उपकरण, देखिए थर्मल थेरेपी को में कई सारी चीज़ें भी शामिल की जाती है, जैसे थर्मल
1: जैसे
0: थेरेपी के अंतर्गत मसाज थेरेपी भी शामिल हो जाती है, जो उपकरण है उसके अंदर मसाज भी होता है, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, FIR रेस की गर्माहट, वाइब्रेशन, टेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये सारे उपकरण जो हमारे पास है उसमें मुख्य रूप से मैट, जो काफ़ी फायदेमंद होती है, मैट के अलावा बेड होते हैं, मसाज चेयर होते हैं, NSM है, बेल्ट है, कुछ पैच है, और जो इस मैट के अंदर लगाया हुआ स्टोन है, तो इस स्टोन का हम लोग अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को कहीं तकलीफ है तो उस स्टोन को वहाँ पे रखने से उसमें लाभ मिल जाता है, क्योंकि उस कुछ स्टोन जो है मैग्नेटिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करके भी किया जाता है, मैग्नेटिक थेरेपी भी हम
1: जी
0: लोग
1: जी
0: कराते हैं, जिसको जिसको न्यूडेनियम मैग्नेट जो है कि उसका इस्तेमाल करके कुछ स्टोन बनाए गए हैं
1: जी
0: जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा। मतलब ये सारी चीज़ों की थेरेपी कराई जाती है, थर्मल थेरेपी के अंदर ये सारा चीज़ आता
0: जी जी
1: है।
0: जी
1: और जैसा कि है सर कि आपके यहाँ जैसे ये कराया जाता होगा तो एक समय सीमा मतलब सीमित होता होगा ना कि मुझे इतना जो लोग आ रहे हैं उनको कितने देर तक आप लोग देते हैं थेरेपी?
0: जैसे देखिए हम अपने थेरेपी सेंटर पे तो हम लोगों को करीबन 40 से 50 मिनट की थेरेपी कराते हैं एक सेटिंग में, तो थर्मल थेरेपी मतलब 40-50 मिनट करने के बाद, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं।
1: नहीं, जैसे कि 40-50 मिनट आप बता रहे हैं और आप मशीनें इतनी ढेर सारी बताए हैं, तो क्या पर्टिकुलर किसी जिसे किसी को घुटने की दिक्कत हो तो घुटने के लिए अलग देते हैं उसके लिए ऐसे, कि पूरी थेरेपी आप बराबर में करवाते हैं?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, जो जिसको जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशानी है उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए वो वही पर्टिकुलर करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं जनरली, जैसे मैंने बताया कि हम लोग प्रिकॉशन के लिए यूज़ करा रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक चीज़ नहीं कराते हैं, हम सारी थेरेपी कराते हैं ताकि ओवरऑल हेल्थ उनका अच्छा रहे।
1: तो ये थेरेपी आप जो सारी करा रहे हैं वो कितने देर की कराते हैं, कितने कितने देर की सारी थेरेपी आप कराते होंगे?
0: टोटल हमने बताया आपको कि एक व्यक्ति को सारी थेरेपी कंप्लीट करने में लगभग 40 मिनट लगता है, कि कोई थेरेपी 20 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, इस तरह से अलग अलग मशीनों के ऊपर अलग अलग टाइमिंग से हम लोग थेरेपी कराते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: जैसे कि आप बताएं बेल्ट है, मैट है, नेशम है और चेयर है, मतलब इस तरह से सारा चीज ले देके मतलब
0: चालीस
1: कुल
0: मिनट
1: चालीस
0: चालीस
1: पचास
0: मिनट तक
1: मिनट आपका
0: जाता
1: लग
0: है।
1: जाता
0: जी जी
1: है। अच्छा, तो जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे लगातार आ रहा है 40-50 मिनट कर रहा है थेरेपी और आराम मिले, तो वो कब तक आ पाता है, कितने दिनों तक?
0: देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कुछ पेशेंट जैसे हम कुछ लोग जो आते हैं वो कुछ दिन करते हैं, कोई 1 महीना करता है, कोई 2 महीना करता है, जब उनको राहत मिल जाती है तो फिर वो नहीं करते हैं, लेकिन जनरली अगर आप चाहें तो इसको हमेशा कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए कैसे क्या किया जाता है सर? जैसे कोई अगर सोचे कि नहीं अब हम नहीं आना चाहते हैं, तो उस क्या किया जाता
0: हाँ,
1: है?
0: ऐसा होता है कि जब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको रोज़ रोज़ आकर थेरेपी करना परेशानी होती है, दूर हो जाता है, जैसे कहीं आने जाने की सब परेशानी है, धूप है, बरसात है, ठंडी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोज़ रोज़ जाना संभव नहीं है, तो इस थर्मल थेरेपी जो हम लोग जिस पे हम थेरेपी कराते हैं ये होम यूज़ की तरह उपकरण बनाए गए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो इसको खरीद के और अपने घर पे रख कर भी इसका लाभ ले सकता है, काफ़ी लोग ऐसा किए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो लोग घर पे ले जाकर करते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, और हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनु जी।
2: अभी आप सुन रहे थे बट वृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था।

0: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 पर और महीने के आखिरी रविवार को 2:30 पर। इस बार दिनांक 30 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दंत संबंधी रोग और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें जरूर फोन करें हमारे इस नंबर पर 0542-222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा आ ठंडी।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर।

रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आइए सुने मेघना कुमार का गाया राग अभोगी। संगत कलाकार हैं तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे मेघना कुमार का गायन। राग था अब होगी, आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। केवल काली पुतली का दान ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। ये आकाशवाणी वाराणसी है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में

0: शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरेकल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharaj Ganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary